मौसम में मंगलवार को सुबह से ही हीट वेव चलने से लोगों का गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य ने अपना रौद्र रूप अपना लिया और भीषण गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई। भीषण गर्मी दोपहर को आधार अस्पताल के सामने बाईपास रोड पर अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। इस गर्मी में और गाड़ी में सवार पिता पुत्र ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पिछले दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान नई ऊंचाई को छू रहा है। झुलसाने देने वाली गर्मी के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा है। मंगलवार को हिसार शहर का अधिकतम पारा 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि इस मौसम का सर्वाधिक है। सोमवार को दिन का पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के साथ रात का पारा भी उफान पर है। रात को पारा 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर आईएमडी ने 22 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गर्मी से फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्यास न होने पर भी पानी पीते रहें, हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने, धूप में निकलते समय सिर पर कपड़ा ढकें, घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी नींबू पानी छाछ आदि का उपयोग करें और गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं और खासकर बच्चों का विशेष ख्याल रखें।

0: बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हील ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी रेडियो हिसार @gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
4: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो वो खुदा होता,
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है,
5: विल यू बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड थॉमस अल्वा एडिसन,
1: कोई कला में उत्कृष्ट है,
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
1: क्या आप परेशान हैं?
6: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
7: आज मैं
1: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
8: दिल के टुकड़े टुकड़े करके,
1: या आप प्यार में हैं?
9: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
10: कोई लौटा दे मेरे गीत हुए दिन।
1: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
1: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
1: एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक, और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगला सेगमेंट आता है आपसे सवाल पूछने का। जी हाँ, हम पूछते हैं आपसे दो सवाल जिनके जवाब आपको भेजने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर। तो आज के सवाल पूछने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अभिनेता राज कपूर के पिता, जो कि खुद भी एक अभिनेता थे, उनका क्या नाम था? राज कपूर के पिता जो खुद भी एक अभिनेता थे उनका क्या नाम था? और दूसरा प्रश्न है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर स्थित है? इन दोनों सवालों के जवाब आप हमें फटाफट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी श्रोता साथी सही जवाब भेजेंगे उनका नाम हम प्रसारित करेंगे अपने कार्यक्रम नमस्ते हिसार में, और साथ ही जो सबसे पहले जवाब हम तक आएगा उनकी पसंद का गाना भी हम सुनवाएंगे। तो कृपया अपने सही जवाब के साथ अपनी पसंद का गीत लिखना भी ना भूलें।

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। आप जानते हैं कि हर शहर की पहचान उसके लोग होते हैं। हिसार की धरती ने भी कई ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और लगन से समाज में एक मिसाल कायम की है। तो हम आज बात करेंगे हिसार के ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्तित्व की जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हौसले अगर मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है।

हिसार की सबसे प्रमुख सार्वजनिक महिलाओं में से एक कुमारी सत्यबाला थी। वो हिसार के एक प्रसिद्ध सेठ लाला जयदेव तायल की पुत्री थी। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1924 को हिसार में हुआ था और उनका पालन पोषण भी यहीं हुआ। हिसार नगर 1972 तक उनकी कर्मभूमि रहा। संभवतः वो हिसार की पहली महिला थी जिन्होंने अमेरिका से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की और बाद में 1978 में हवाई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अपने सार्थक जीवन के 77 वर्ष और 3 महीने पूरे करने के बाद सुश्री सत्यबाला का देहांत 6 जनवरी 2002 को नागपुर में हुआ। आइए अब उनके

सामाजिक कल्याण कार्यों पर कुछ नजर डालते हैं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब उन्होंने पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अथक प्रयास किए। लगभग 1950 में हिसार जिले में भीषण अकाल पड़ा, तब उन्होंने एक महिला राहत समिति का गठन किया और 50,000 रुपए एकत्र किए। उन्होंने दूध और चारा वितरित करके महिलाओं और पशुओं के कल्याण के लिए काम किया। जब आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लगभग 1960 में भूदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हिसार का दौरा किया तो कुमारी सत्यबाला ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। अपने कार्यों से हमें आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने एक बार लिखा था, मैंने हिसार जिले के 600 गांव में पदयात्राओं का आयोजन किया। मैंने 30,000 एकड़ भूमि एकत्र करने के लिए 3,000 मील की पैदल यात्रा की और मौके पर ही भूमिहीन मजदूरों के बीच 22,000 एकड़ भूमि वितरित की। उनकी भूमिका केवल हिसार जिले तक ही सीमित नहीं थी। इसके अलावा डॉक्टर सत्यबाला तायल नागपुर के मातृ सेवा संघ नामक एक सामाजिक कल्याण संगठन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ गई थी। उनके योगदान के फलस्वरूप मातृ सेवा संघ नागपुर को शीघ्र ही कुशल प्रशासनिक ढांचे और सुदृढ़ वित्तीय आधार पर स्थापित किया गया। उन्होंने 1996 में अपनी बीमारी के बाद ही सेवानिवृत्ति ली और फिर 6 जनवरी 2002 को अपने जीवन के अंतिम दिन तक इसके सलाहकार के रूप में काम किया। डॉक्टर सत्यवाला तायल हिसार की पहली महिला थी जिन्हें किसी पत्रिका के संपादन का श्रेय प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए उन्होंने 1961 से 1972 तक जागरूक महिला नामक एक महिला पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया जो महिला उत्थान के लिए समर्पित थी। सामाजिक कल्याणकारी कार्यों विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के कारण उन्हें पंजाब और महाराष्ट्र सरकारों के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई बार सम्मानित किया गया। उनके कुछ सार्वजनिक सम्मानों में सावित्रीबाई फुले पुरस्कार और विश्वाल्य पुरस्कार शामिल हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से डॉक्टर सत्यबाला तायल हिसार में जन्मी पहली महिला थी जो उच्च शिक्षित, व्यापक रूप से यात्रा करने वाली और सुशिक्षित थी। यद्यपि वो जीवन भर अविवाहित रही फिर भी वो सामाजिक कल्याण विशेषकर नारी उत्थान के नेक कार्य के प्रति समर्पित थीं।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका नमस्ते हिसार कार्यक्रम में। और अब हमारे पास हमारे श्रोताओं के जवाब आ चुके हैं व्हाट्सएप नंबर पर भेजने के लिए, जो हमने उनसे कहा था और दो सवाल पूछे थे। तो सबसे पहले हम सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। पहला सवाल था, अभिनेता राज कपूर के पिता जो खुद भी एक अभिनेता थे, उनका नाम क्या था? उसका सही जवाब है पृथ्वी राज कपूर। और जो दूसरा प्रश्न था, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? उसका सही जवाब है शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित है। हमारे कुछ श्रोताओं ने इसके बिल्कुल सही जवाब भेजे हैं, तो हम उनके नाम पढ़ देते हैं। सबसे पहले ये जो जवाब है ये आया है गांव जेवरा हिसार से। भेजने वाले हैं वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, मनोज भ्यान। और अगला जो सही जवाब भेजा है, सबसे पहले तो वीरेंद्र भ्यान जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई सही जवाब के लिए। ये सही जवाब भेजा है उमेश सांगवान ने, ग्राम पैंतावास कला से, तहसील जिला चरखी दादरी से। आपको भी बहुत बहुत बधाई सही जवाब के लिए। और ये अगला और सबसे तेज सही जवाब है ये जो भेजा है, ये है गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार से, सज्जन जांगड़ा, राजपाला, नवीन, मंदी, प्रियंका, सपना, नीतू और वेदांश जांगड़ा। आपको भी बहुत बहुत बधाई सही जवाब के लिए। और क्योंकि सबसे पहले आपका जवाब हम तक पहुंचा है, इसलिए सुनवा रहे हैं आपको वो गीत जो आपने सुनना चाहा है, फिल्म ब्लैक कैट से।

श्रोताओं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो तारीख नहीं होते, वो आईना होते हैं हमें हमारी ही लापरवाही दिखाने के लिए। आज का दिन उन बेहद छोटे मगर बेहद जरूरी प्राणियों का है जो न दिखना चाहते हैं न सुनाई देना, फिर भी पूरी धरती को चलाए रखते हैं। हम अक्सर उन्हें खतरा समझते हैं, डंक का डर हमें उनसे दूर रखता है, कभी हाथ से झटक देते हैं, कभी जहर से खत्म कर देते हैं। पर यह सच है कि हमारी रसोई की खुशबू, हमारी सब्जियों का रंग और फलों की मिठास, इन सब के पीछे उन्हीं के पंखों की थकान छिपी है। वो जब उड़ती हैं तो केवल फूलों के बीच नहीं जाती, वो खेतों को भविष्य देती हैं, बीजों को कारण देती हैं और जीवन को अगला मौका। अगर वो रुक जाए तो सिर्फ शहर नहीं रुकेगा, धरती की सांस अटक जाएगी। और आज हम वही कर रहे हैं जो सबसे आसान है, उनके लिए जगह कम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, बिना शोर, बिना विरोध, बिना सुर्खियों के। लेकिन याद रखिए, प्रकृति कभी एक तरफा नुकसान नहीं सहती। जो हम उनसे छीन रहे हैं, कल वही हमारी जिंदगी से घटेगा। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की, क्योंकि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। आप सभी को विश्व मधुमक्खी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन उन छोटे छोटे पंखों के नाम है जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शोर के इस धरती को जीवंत रखती हैं। ये मधुमक्खियां जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, हम उनसे डरते हैं, बचते हैं, कभी कभी भगा देते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि हमारी थाली का हर निवाला उन्हीं की मेहनत का फल है। जब एक मधुमक्खी फूल से फूल तक उड़ती है तो वो केवल मकरंद नहीं बटोरती, वो परागण करती है, वो जीवन को आगे बढ़ाती है, वो प्रकृति की उस अदृश्य धड़कन को जीवित रखती है जिसके बिना ये पृथ्वी सूनी पड़ जाए। किंतु आज हम उन्हें खोते जा रहे हैं। विकास की आंधी में, कीटनाशकों की बाढ़ में, प्रदूषण की धुंध में वो छोटे पंख थकते जा रहे हैं, उनके छत्ते उजड़ रहे हैं, उनके फूल सिकुड़ रहे हैं, उनकी दुनिया संकरी होती जा रही है। एक बड़े स्तर के मधुमक्खी पालक मुकेश पाठक जी का कहना है, मैं ये केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से जानता हूं, जब छत्ते में चहल पहल कम होती है तो मन भारी हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये केवल शहद का नुकसान नहीं, ये प्रकृति की एक चेतावनी भी है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का सबसे सार्थक कदम यह होगा कि केवल संवेदना नहीं, संकल्प भी लेना होगा। अपने घर के आसपास फूलदार पौधे लगाएं, मधुमक्खियों को एक सुरक्षित आश्रय दें, अनावश्यक कीटनाशकों के उपयोग से बचें, जो उन्हें मारता है वो हमें भी कमजोर करता है। प्राकृतिक शुद्ध शहद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि शहद केवल एक मिठास नहीं, ये प्रकृति का सबसे पवित्र उपहार है।

श्रोताओं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी रोचक बातें सुनने को मिलती हैं, वो इतनी दिलचस्प होती हैं कि हमें सुनकर लगता है कि ये तो हमें पता ही नहीं था। ज्ञान का एक छोटा सा तड़का जो न सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि आपकी बातचीत को भी बनाएगा और मजेदार, और सुनकर आपको ये लगेगा कि हमें ये चीज पता क्यों नहीं थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजेंद्र चोल ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर बंगाल की खाड़ी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसे चोल झील बना डाला था। जी हाँ, लगभग 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को पार कर श्री विजय साम्राज्य के राजा संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को हराया था। इस विजय के बाद बंगाल की खाड़ी से होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर चोल साम्राज्य का एक अधिकार स्थापित हो गया था। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर

दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर पश्चिम में करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा गांव है, मैकलुस्की गंज। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए बसाई गई दुनिया की इस बस्ती को मिनी लंदन भी कहा जाता है। पश्चिमी संस्कृति के रंग ढंग और गोरे लोग होने के कारण इसे लंदन का सा रूप देती है, तो इसे लोग मिनी लंदन कहने लगे। इंसानों की तरह मैकलुस्की गंज को भी कभी बुरे दिन देखने पड़े थे। यहाँ के लोग उस दौर को भी याद करते हैं जब एक के बाद एक एंग्लो इंडियन परिवार ये जगह छोड़ते चले गए। कुछ 20-25 परिवार रह गए, बाकी ने शहर खाली कर दिया। इसके बाद तो खाली बंगलों के कारण भूतों का शहर बन गया था मैकलुस्की गंज। लेकिन अब कुछ गिने चुने परिवार मैकलुस्की गंज को आबाद करने में जुटे हैं, जो सब एक नए मैकलुस्की गंज की ओर मिनी लंदन को ले जा रहे हैं। दोस्तों, आज भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी भी पहचान के संकट से जूझ रही है। वहीं कर्नाटक के शिमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुत्तुरु और होसाहल्ली तुंग नदी के किनारे बसे ये गांव हैं, और इन गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। जी हाँ, यहाँ लगभग 90% लोग संस्कृत में बात करते हैं। भाषा पर किसी धर्म और समाज का अधिकार नहीं होता, तभी तो गांव में रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोग भी संस्कृत उतनी ही सहजता से बोलते हैं जैसे दूसरे लोग।

तुम्हें साथी बने हैं।

नमस्ते हजार कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कुछ दिलचस्प बातों की। एक ऐसा गांव है भारत में जो हर साल कमाता है 1 अरब रुपए। उत्तर प्रदेश का एक गांव अपनी एक खासियत की वजह से पूरे देश में पहचाना जाता है। शायद आप इस गांव को नहीं जानते होंगे, लेकिन इस गांव ने देश के कोने कोने में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। इस गांव का नाम है सलारपुर खालसा, जो अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 3500 है। इस गांव के प्रसिद्ध होने का कारण टमाटर है। जी हाँ, इस गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां पर इस गांव की जमीन पर पैदा हुआ टमाटर न जाता हो। दोस्तों, हमारे देश में सफाई के मामले में बहुत पीछे हैं सब, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा गांव है जो एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। इस गांव को भगवान का अपना बगीचा कहते हैं। ये गांव है मावल्या नांग गांव, जो खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का गांव है, और ये गांव मेघालय के शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। सफाई के साथ साथ ये गांव साक्षरता में भी नंबर वन है। यहाँ पर 95 परिवार रहते हैं जिनकी जीविका का मुख्य कारण सुपारी है। इतना ही नहीं, यहाँ के ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। यहाँ लोग घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को बांस से बने डस्टबिन में जमा करते हैं और उसे एक जगह इकट्ठा कर खेती के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि ये गीत कहता है, कभी अलविदा ना कहना। अलविदा कभी नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, यहीं आकर आज की हमारी मुलाकात धीरे धीरे एक मीठी सी याद बन जाती है। आज की बातें, आज की मुस्कान, आज की भावनाएं हम यहीं संभाल कर रख रहे हैं अपने दिलों में, क्योंकि रेडियो सिर्फ आवाज नहीं होता, रेडियो एक रिश्ता होता है जो हर दिन आपसे, आपके घर से और आपके दिल से जुड़ता है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारी बातों को सुना और इस सफर का हिस्सा बने, इसके लिए दिल से धन्यवाद। याद रखिएगा दोस्तों, कल फिर एक नई सुबह होगी, नई उम्मीदें होंगी, नई बातें होंगी और फिर गूंजेगी आपके अपने शहर हिसार की आवाज। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त ऋतु कौशिक। आज दीजिए इजाजत, फिर मिलने का वादा लेकर आपसे विदा लेने की चाहती हूँ आपसे अनुमति।

102.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनने वाले हैं विविध भारती के प्रसारण।

0: लगे जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन मगर आहिस्ता।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव। ये नया रिकॉर्डिंग और इससे आगाज रंग तरंग का।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको। मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनाऊं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त।

सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस

0: सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहार खिली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राज हट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी है गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजनू सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरसती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनाऊं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम रागिनी।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार, संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ, फिल्म का नाम मदर इंडिया।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूं ने और सुनी से समारा है नौशाद ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट आपसे दो घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स

0: जिसमें आप सभी ने
1: एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर, किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। ये है आज की इबारत, और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम दो गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे, और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोपहर के 1:05 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अब ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एक राष्ट्र के एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
1: जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो, और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 30 मई को सुबह 6 से 8 बजे तक प्रदेश के 6 प्रमुख स्थलों पर दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक आयोजित की जाएगी। हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान हेरिटेज एंड सिटी वॉक के लिए विशेष विवरणिका का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि आओ चले अपनी विरासत के साथ मुहिम के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को हरियाणा की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सके तथा उनसे प्रेरणा।

0: प्रेरणा ले सके। पहली बार 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था।
1: हेरिटेज एंड सिटी वॉक में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को क्यूआर कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसकी पूरी जानकारी और पंजीकरण संबंधी विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा इच्छुक लोग मौके पर पहुंचकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जैन नागरिक अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वार्डों में पुरुषों की अनावश्यक आवाजाही पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश पांचाल ने कल इन वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पुरुष वार्ड के अंदर और बेड पर बैठे मिले, जिससे महिलाओं को असहजता का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रमेश पांचाल ने बताया,
2: तो महिला वार्ड है एसएनसीयू के सामने, जो बच्चों के लिए जो वार्ड बनाया अलग से माँ के लिए, बच्चे के लिए रेस्ट करने के लिए, उसमें आदमी अंदर घुसे रहते हैं। तो मैंने यही कहा है कि सबकी बहू बेटियां बराबर है, कोई माता है, बहन है, कोई दूध पिला रही होती है बच्चे को, तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए उनसे पहले भी कई बार अनुरोध किया, अब भी अनुरोध किया, आपकी जहाँ गायनी डिपार्टमेंट है, गायनी वार्ड है, तो वहाँ आदमियों को अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी औरत के साथ कई बार कोई घरवाला ना हो, आदमी हो, वो मजबूरी है।
1: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल और मिशन चेतना फाउंडेशन प्रमुख सुश्री मनीषा चौधरी ने कल पंचकुला में स्वास्थ्य भवन परिसर से बाल टीवी मरीजों के लिए विशेष फोर्टिफाइड पोषण आहार पैकेट ले जा रहे वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण वितरण का ये महत्वपूर्ण अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस सामूहिक प्रयास में मिशन चेतना फाउंडेशन और राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने निक्षय मित्र के रूप में आगे आते हुए हरियाणा राज्य के 3 जिलों में 0 से 18 वर्ष तक के 70 बाल टीबी मरीजों को 6 महीने की अवधि के लिए गोद लिया है, जिसमें पंचकुला के 20, अंबाला के 20 और यमुनानगर के 30 मरीज शामिल हैं। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में फरीदाबाद स्थित मांगरबानी अरावली क्षेत्र में कल नेचर वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का थीम एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण।
4: में पेड़, पहाड़, नदी, पंछी, सागर, फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

कोई गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया, इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहां थी मैं आपको बताता हूं। दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूं। जी हां, बहुत ज्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर जिस भी इलाके जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है, इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अपने घर में अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप जमीन पर आपका घर है तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत सागर किनारा गुलमोहर नदी पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे, बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहां तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, अपने कोशिश की आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती है कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर है। एक और श्रोता है जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से वृक्ष

पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलता, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी, ये भी बता सकते हैं आप।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। वही सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे

श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकूनदेह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है कि फ्लैट में रहती हूं और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहां बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी है जो गंगा नदी के किनारे रहती है और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

0: नदिया से दरिया।
1: लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है।
2: जाओ शाम पैया पर नदी नारे न जाओ शाम पैया पर।
1: और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है। लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

क्या शानदार गाना है। नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था। कुदरत से जुड़े और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी। हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई। शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रही है कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता है जो कहती है कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता है जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए।

कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समुंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समुंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुद्र का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर, जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: ओ अपने,
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है?

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के ये नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आसमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीर की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

0: झुक जाए।
1: बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है दो नदियों के बीच बसा है, महानदी और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि इन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती है। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती है कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

दोस्तों ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है, जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जांसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

0: खड़ूस
1: तुम्हें तो एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मधे की, अपना ये माल आ

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहां फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थी। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

26 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं, यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि

0: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है।

0: 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे

0: तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख

0: वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं OP नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बहारें खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए। हाँ, तो बात करने से कुछ नहीं होता।
0: हाँ।
1: तो

0: मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या,
1: अरे वाह,
0: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे वहां।
1: क्या बात है, क्या बात है। जमी
0: जी
1: चेहरे की चमक बता रही है
0: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
0: बिल्कुल।
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
0: बहुत बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा।
0: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आप एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध है तो, लेकिन इस बार था रोप वे शुरू हो गया वहां पे।
1: अच्छा।
0: तो बस आप रोप वे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से किसी भी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का, अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो,
1: अरे
0: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा।
0: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां भी बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो है यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
0: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है, तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना। जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
1: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है,
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
0: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखिए, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
0: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है।
1: हाँ।
0: मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
1: लेकिन फर्क होता है,
0: स्वाद बिल्कुल फर्क होता है,
1: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ, और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
0: जी।
1: तो अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काट के बहुत बुरा है,
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता है वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना जी। और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखे और जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, हमें खिलाएंगे भी, ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी,
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर

0: मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं और अनाज होगा कि नहीं, इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से

0: हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख
1: बताइए, तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
0: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती है।
0: जी, हमारे ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था।
0: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सके। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वह है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
1: करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिए तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है।
0: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे

0: बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: जारी ना बताऊं मैं तो नाम किस चोर का, जारी ना बताऊं मैं तो।
1: तो आरती
2: नाम नहीं बताने वाली हूँ
1: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल।
1: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
2: अरे बहुत
1: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये साड़ियां। और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
2: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
2: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
1: नाम
2: भाई थे। और बंबई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
2: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: बहुत मुश्किल है।
2: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें 1 या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
2: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
2: बिल्कुल। और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन उनका जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का, तो हमसे शामिल करें।
2: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते
1: गीत सुनते।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी है और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपने भाव

0: भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
1: बहुत गहरी बातें आती है अगर हम इसे समझ पाए तो, कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ में आता है ना, तरीके से जिस भाषा जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो उसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर।
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए।
1: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक। उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
0: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती
0: हैं, सबका नजरिया
1: मायना रखता है, है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
0: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में,
1: अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं,
1: तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
0: बिल्कुल।
1: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
0: बिल्कुल जोड़ती है। और और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए। अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हैं।

0: हूँ।
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए, इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना, लेकिन शौक रखना चाहिए,
2: अपने मन से सीखिए। आपको खुद अच्छा लगेगा कि हमें कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
2: जी जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा,
0: हम चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है, देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
2: बिल्कुल।
0: तो ये गीत सुनिए।
2: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब ये जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उसपे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखते हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना कुछ,
0: वो तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आए ना। आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल कर
1: आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है।

0: इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया
1: बिल्कुल मत छेड़िए।
0: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है, है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भी ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा है,
0: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है,
0: बिल्कुल,
1: तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं,
0: बिल्कुल। देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: चलिए, जरूरी है, भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा
1: का भी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए
1: जी।
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहाँ समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहाँ सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या है वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: जी तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता

0: देखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्य वर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं और धीमी आंच पर तल लीजिए। आपका

0: जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेको और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पर मिल जाएगी।
1: तो बनाने की मैं भी
0: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर है जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर

0: तरोताजा हो गया, और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
1: क्या बात है सर। बातें हो रही है जयपुर के जमाने की, और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किया बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
0: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
1: जी,
0: अल्मोड़ा हुआ,
1: अरे गजब, पहाड़ों
0: पहाड़ों पर।
1: पर
0: और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं,
1: जी,
0: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त, तब तक
1: अच्छा
0: शुरू नहीं हुआ था। तो
1: जी
0: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह को इतना आदी था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब।
1: हाँ
0: और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था
1: जी
0: वो एक अलग अनुभव था।
1: जी
0: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है, और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
1: हाँ
0: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
1: हाँ
0: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है,
1: बहुत
0: भूलने जाओ
1: मुश्किल
0: तो अलग बात है,
1: जी,
0: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो, कभी
1: हाँ
0: रहा ना हो,
1: हाँ हाँ
0: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन गुजरा। और मैं 1.5 साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, उसके बाद फिर बॉम्बे आया
1: अच्छा
0: 86 में।
1: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था,
0: हाँ।
1: तो वो तमाम चीजें
0: और
1: वो
0: वो भी
1: सब
0: सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अज्ञेय जी वहां पर
1: हाँ
0: रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: यस,
0: ये सब
1: उदय
0: भी,
1: शंकर जी का
0: उदय
1: था
0: शंकर, सॉरी, उदय
1: जी
0: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब,
1: जी
0: कि ये सब कुछ। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे रह
1: रहते
0: गए।
1: कैसे
0: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, कि
1: जी
0: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
1: वो
0: पहाड़ों में
1: पहाड़ों
0: कैसे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये था।
1: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बड़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी,
1: जी
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे, तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक
1: जी
0: अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है
1: हाँ
0: उस पे, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का सालों तक हम तो फ्रेश थे एकदम,
1: बिल्कुल,
0: है
1: और तब तो लंबी लाइनें
0: हाँ,
1: हुआ
0: वो लंबी
1: करती
0: लाइनें
1: थी
0: हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहां रहे, और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटोपिल से किंग सर्कल आना, वहां से पैदल,
1: जी,
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस सब शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ
0: में।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ,
1: ढाल
0: तो
1: लेता
0: फिर
1: है
0: वो लोग अपने आप आपको उतार
1: जी।
0: देते हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार, तो
1: जी।
0: ये
1: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहां जो जिंदगी बदली, वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त कीचे
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको
0: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो।
1: बिल्कुल।

0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो जाने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा। और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहली मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है।
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने एल्बम में जो कुछ चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। तो उसके बाद जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है। जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था। जब मुंबई में होते थे तो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे
1: जी,
0: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं।
1: वाह वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूं मैं, करता हूं, सोचता हूं, बताता हूं, है ना
1: जी।
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
1: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
1: ये जो जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह,
0: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ,
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती। तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए
1: जी जी जी। ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद में नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वो
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब

की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी,
1: और ये कंसर्ट में भी अक्सर गाया करते थे, और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूं और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उसके जो कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है।

0: और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहां ऐसे कमेंट्स हैं उस गजल पे, तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
0: पंकज जी उसके बाद
1: जी।
0: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ शख्स अरपल हादसा होने से, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
1: नबील था,
0: हाँ
1: नबील,
0: नबील
1: था?
0: नबील
1: जी जी।
0: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं
1: जी।
0: तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पे भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में
1: जी।
0: अच्छा उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
1: अरे बाप रे,
0: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
1: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
0: नहीं नहीं नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
1: अच्छा
0: है,
1: ओके।
0: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
1: आरोही में गाया।
0: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनते थे, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खाके गजल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त ने ये बात
0: कही, मेरे दोस्त, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे
1: जी जी।
0: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खाके गजल लिखते हैं, है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था
1: जी।
0: अच्छा दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत में एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहां गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक प्रो हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया, कुछ मतलब कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया, हाँ ये सुर का इधर उधर, नहीं फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये हुआ। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये मजरू सुल्तानपुरी
1: शायर की बात है ना,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

0: सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा
1: जी।
0: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ।
1: उससे
0: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
1: जी।
0: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
1: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
0: मशहूर
1: जी।
0: आज तो वो दौर नहीं है
1: जी,
0: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
1: जी,
0: मजरू सुल्तानपुरी,
1: कैफी आजमी,
0: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
1: जी।
0: अली सरदार जाफरी उसके वो थे, सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे,
0: अजीत एक्टर
1: जी,
0: और भी और कई थे फिल्म से काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर अलग ही हुआ करता था
1: जी,
0: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
1: अरे बाप,
0: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
1: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूं तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
1: हाँ हाँ,
0: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
1: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब जी,
0: मुशायरा तो हो गया।
1: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
0: तो ये बड़ी बात थी
1: जी।
0: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
1: जी,
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
1: गजब,
0: अपने घर पर
1: जी,
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन मुझे बता रहा हूं जिसके बारे में
1: जी।
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
1: हाँ हाँ,
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका आखिरी एल्बम था ये।
1: ओहो हो,
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में
1: जी,
0: वो चले गए
1: जी।
0: वो एल्बम रिलीज हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
1: जी।
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूं कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ, मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूं कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हो, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
1: जी जी जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने यह गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन खोला,
0: ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
1: जी।
0: तो ले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है पूरा
1: और पूरा हॉल,
0: पूरा हॉल है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो घर है, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, सेटिंग माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई भी नहीं कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: उनको
0: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी
1: जी।
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी जी,
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं।
1: अद्भुत अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं ले गए आप,
1: अरे
0: क्यों
1: नहीं ले गए,
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं था मुझे। तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान

0: बाकी है जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस
1: क्या बात है,
0: आसमान
1: बाकी है।
0: बाकी है जाने कितनी उड़ान बाकी है। रसूल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जबान बाकी है जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार।
0: जी
1: विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों पे।
1: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली।
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीजों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल,
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से।
1: चीजों को
0: हाँ,
1: संभालते
0: सबको सब संभालते थे।
1: थे
0: तो एक अच्छी टीम थी
1: जी,
0: जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी,
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता है,
1: एक नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे
0: है।
1: जी।
0: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ रहे हैं,
0: कहीं,
1: कयाम साहब आ
0: हाँ
1: रहे हैं
0: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत कहले, प्यारेलाल जी आए,
1: जी,
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आया यहाँ पे, कौन
1: बिल्कुल,
0: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना,
1: आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: खयाम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: हाँ तो बड़े
1: हाँ
0: बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान,
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
0: ना,
1: और वही 1 घंटे बात हो रही
0: हाँ, उनको
1: है
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था, वो
1: जी,
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का, और
1: बिल्कुल
0: उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी सोच किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान

0: मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
1: किसी के पास,
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या गानों पे बातें हो रही है, या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर
0: एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जो है वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: पूरा
0: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: ये क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी।
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
1: जी जी।
0: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी।
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को। तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं, है मतलब, तो वो बिजनेस में थे, जापान में हमारे फादर ला, दोनों ब्रदर ला, हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी,
1: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था और मां को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हम आर्य समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
0: जी,
1: तो वो सब आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
0: अरे
1: मैं अपने घर चला आया।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है।
0: हा।
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं सकता,
1: होंगी नहीं, सबकी तो हमारे जो लेक्चरर्स थे।

0: तो नेचुरली वहां से रजिस्ट्रेशन सुना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़ दौड़ जापान से लौट के आए, फिर
1: हाँ
0: उन्होंने सब बता दिया सब कुछ। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
1: हाँ
0: तो मुझे यहां से ले जाओ,
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूं मैं आपको,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मुझे ले जाओ यहां से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया उनके, और
1: गजब।
0: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
1: हाँ
0: हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम
1: हाँ
0: इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे,
1: हाँ
0: उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे,
1: हाँ हाँ
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे,
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: तो मैंने
1: ये
0: कहा हाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं।
1: जी जरूर, इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा,
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह,
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर,
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: कोरे
1: गिरा,
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक
1: बात है,
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना,
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: गम
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या
0: छुपाना
1: बात है,
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी,
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरही मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन को।
1: होता है
0: हाँ,
1: ये,
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने

0: अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहां से हम खुद को समेटते हैं यहां से वहां
1: क्या बात है,
0: से हम
1: क्या बात है, क्या बात है।

0: यकीन का गुमान
1: वाह
0: से
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: लेने
1: शानदार, क्या बात,
0: लगे हैं काम यकीन।

0: कि तूने कहां से हूं।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, FM बैंड 102.3 MHz पर।

आपका प्यार आपका ख्वाब ये है आपका इंतजार आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड सदाबहार नगमे और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों दिन भर की तपती धूप को सहने के बाद घर का आंगन प्रतीक्षा करता है कि कब धूप का साया धीरे धीरे दीवारों से उतर कर आएगा और अपनी उस ठंडी ठंडी छांव से उसे ढक लेगा। जिस छांव के आते ही पक्षी भी चहचहाने लगते हैं और पेड़ों के पत्ते भी जरा धीरे धीरे हिलने लगते हैं। पूरा शहर ही जैसे इंतजार करता है इस शाम का, क्योंकि इस ठंडी शाम के साथ ही घर और बाजार की रौनकें हैं, चहल पहल है जो इस शाम का इंतजार करती है, क्योंकि तपती धूप हमें जीने कहां देती है, हमारे दिल को और हमारे पूरे दिन को इसी शाम का इंतजार रहता है। और कुछ लोगों के लिए तो ये शाम सुकून और शांति लेकर आती है, क्योंकि वे बेफिक्र हैं, क्योंकि वो सही करते आए हैं, सही सोचते आए हैं और सही बोलते आए हैं, इसीलिए वो बेफिक्र हैं। और वैसे तो कहते हैं कि आत्मचिंतन का भी यही एक सही वक्त है और चाय का भी यही एक सही वक्त है। और किसी ने क्या खूब कहा है, कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो ये समुद्र को सुखा नहीं सकती। आइए ये पहला गीत इसी शाम के नाम।

दोस्तों, ये जिंदगी है और जिंदगी में तो धूप और छांव का वैसे ही आना जाना रहता है जैसे कि सुख और दुख का। सुख की ठंडी छांव भी हमें मिलेगी, लेकिन कभी कभी दुख के काले बादल भी यूं ही गरजेंगे, बरसेंगे और आपको आपकी जिंदगी में इतना परेशान करेंगे कि आप कभी कुछ कहेंगे, कुछ सोचेंगे और वो भी कर जाएंगे जो आप कहना या करना नहीं चाहेंगे। भाई, राहों में कौन आया गया कुछ पता नहीं, उसको तलाश करते रहे जो मिला नहीं। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। तो बात बस इतनी सी है कि वक्त वक्त की बात है, बस ये वक्त हर वक्त हमारे हाथ में नहीं होता, इसीलिए हमें इंतजार करना चाहिए और उसका सबसे पहला सोपान है सब्र, धैर्य। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों कहते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे ना तो ज्यादा सलाह देनी चाहिए और ना ही उन्हें ज्यादा जज करना चाहिए। उनके निर्णयों पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि हम जितना दूसरों को जज करने लगते हैं उतना ही उसके प्रति अपने प्रेम की ताकत को खोते चले जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि

रखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, शाम तो हर रोज आती है और ये लेकर आती है बहुत से संदेश, लेकिन कोई शाम ऐसी खास भी होती है कि हम कहें कि रोज शाम आती थी लेकिन जैसी आज शाम है वैसी पहले कभी ना हुई। और ये निर्भर करता है इस बात पर कि हमारा दिन कैसा गुजरा, हमारा दिल कैसा था, हमारी सोच कैसी थी, और सबसे बड़ी बात कि आज हमने अपने अंदर क्या बदलाव किया, हमने अपने आप को कहां तक सही किया, और हमने कब सोचा कि हम सही भी थे और हाँ हम गलत भी थे। अपनी गलती मानना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, वो कमजोरी नहीं है, क्योंकि गलती मानेंगे तभी तो सुधरेगी। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से ओल्ड इज गोल्ड सदाबहार नगमे अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ। दोस्तों काश हर सुबह ऐसी हो, हाँ जैसी सोची थी वैसी हो, दिन की हर घड़ी ऐसे गुजरे जैसे सूरज की उजली किरण हो, जिसमें कोई झूठ कोई गलती कोई शिकवा कोई गिला कोई शिकायत कोई मलाल ना हो, ना अपने आप से ना किसी दूसरे से कोई शिकायत ना हो, ऐसे ही हर घड़ी गुजरे दिन की और शाम हो जाए। वो कहते हैं हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

दोस्तों, हम जिन्हें चाहते हैं उनका ख्याल हमारे दिल में एक दिन में कई कई बार आता है, लेकिन एक बात और है कि जिनसे हम गुस्सा होते हैं उनका भी ख्याल हमें कई बार आता है। फर्क इतना है कि प्यार रूह में बसता है, उसके होने या ना होने से हमें फर्क पड़ता है, उसके खुश होने और नाराज होने से भी हमारे दिल पर असर पड़ता है। वो कहते हैं ना कि दरों दरवाजे या इनकी आवाजें सबको सुनाई देती हैं, लेकिन खामोशियों की आवाज बस रूह को सुनाई देती है।

समंदर के सफर में इस तरह आवाज दो हमको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए।

दोस्तों, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल भी खो जाता है। इश्क की राह पर चलना आसान भी नहीं होता। इश्क करने वालों को एक इंसान से ही नहीं इश्क होता, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी गली, उसके शहर, उसके हर अंदाज पर वो फिदा हो जाता है। तो फिर वही तो ये कह सकता है कि मुझे उनके शहर की हर सुबह शाम बड़ी भली लगती है। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, ज़बां सब समझते हैं मेरे जज्बात की।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कल भी नंबर वन था और आज भी बॉस है, ये आकाशवाणी है। दोस्तों, हाले दिल तो उनको ही सुनाया जाता है जो सुनना चाहे, वरना अपना गम सबको कहना तमाशा लगता है। प्यार करना आसान है, उसको निभाना मुश्किल है। एक इंसान को पूरी शिद्दत से कबूल करना, उसकी कमी, उसकी गलतियों के साथ उसके पहलू में खड़े रहना, ये मोहब्बत है। वरना मोहब्बत मोहब्बत नहीं, फिर वो तो दिखावा है जो दो कदम साथ चल नहीं सकती। मेरे बारे में हवाओं से वो कब पूछेगा, मेरे बारे में हवाओं से वो कब पूछेगा, खाक जब खाक में मिल जाएगी क्या तब पूछेगा।

श्रोताओं, जैसे परिंदे भी शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं, जैसे हर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, वैसे ही जिंदगी में आपकी और हमारी सुबह दुआ करते हैं खुशगवार हो और शाम खुश नसीब हो जो आपके और हमारे नसीबों में हो। और ओल्ड इज गोल्ड के सदाबहार नगमों को अब हम यहीं संपन्न करते हैं। इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सारिका शर्मा को।

श्रोताओं, ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए हिंदी समाचारों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। प्रतीक्षा के बस चंदपल और हमारे साथ

0: मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी

वाणी का ही सार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। पहले आज के शेष आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत, और 6:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

खेती किसाना से थी आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे और 7:30 पर आप सुन सकते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन्स इंडिया और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे महारी गांव के तहत रागनिया। फिल्म संगीत आप सुनेंगे आज रात 8 बजे और हरियाणा के गलियारे से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। श्रोताओं आज रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की और अब कल के आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर और प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे लोकरंग और 7:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओं, कल प्रातः 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते हिसार और इसी बीच 1:05 पर रिले होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से।

श्रोताओं, कल हमारी सायंकालीन सभा के तहत 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम थारी मारी पसंद, और 6:20 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। फोन इन के तहत किसानवाणी कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे, और हमारे गांव का समय रहेगा 7:30। व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आप सुन सकते हैं कल रात 8 बजे। श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम। तो ये थी जानकारी आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण लू की स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्रित करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। उन्होंने 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और बागवानी विभाग द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए किलो तय किया गया है। इससे अब किसान को एक निश्चित आय की गारंटी मिली है। वे विश्व मधुमक्खी दिवस पर हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालकों को अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव से राहत दिलाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है।
1: हरियाणा सरकार लगातार किसान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत कर रही है। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी भी ई क्षतिपूर्ति के माध्यम से भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और इसी प्रकार से हमारा सब्जी का किसान, अगर उसको बाजार में दाम कम मिलते हैं तो उस घाटे की भी भरपाई करने का काम सरकार करती है। हमने 16 अगस्त 2025 को पंचकुला की भूमि पर यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम करेगी। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ आप तक पहुंचेगा।
0: उन्होंने कहा कि इसके अलावा मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मधुमक्खी पालन नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ाकर 7,750 करने और शहद उत्पादन 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बॉक्स, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक ढंग से चलाने में सहयोग करने के लिए कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल की तकनीक पर आधारित देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस केंद्र पर लगभग 800 टन शहद का व्यापार हो चुका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मधुक्रांति पोर्टल पर हरियाणा के 3,000 से अधिक मधुमक्खी पालक रजिस्टर्ड हैं। मधुमक्खी पालकों के रजिस्ट्रेशन करवाने में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए मधुमक्खी पालकों द्वारा शहद और शहद से बने उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। इससे पूर्व हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा

0: विभाग ने शहद उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने को लेकर कहा।
1: कुछ महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये साथी आए थे और उनकी एक दिक्कत थी, वो भी दूर कर दी। तो क्योंकि MSP तय कर दिया और उससे कम बिकेगा तो भावांतर मिलेगा। वैसे ये योजना हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें सबसे ज्यादा किसानों

0: newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने आज राज्य के श्रमिकों एवं श्रम नियुक्तियों को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। श्री विज ने बताया कि ये ऐप डिजिटल क्रांति के तहत विकसित किया गया एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जो श्रमिकों और नियुक्ताओं के बीच सीधा, पारदर्शी और त्वरित संपर्क स्थापित करेगा। ये ऐप हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीन भाषाओं में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रमिक एवं नियोक्ता सरलता से इसका लाभ उठा सके। श्री विज ने कहा कि श्रम मित्र ऐप दैनिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में कार्य करेगा और आने वाले समय में पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्रमिकों को काम की तलाश में घंटों लेबर चौक पर खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। श्री अनिल विज उनके पास खुद ज्ञापन लेने पहुंचे और कर्मचारियों ने मंच से ऊर्जा मंत्री के हक में नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में श्री अनिल विज ने कहा,
1: तो मुख्य वादा रखी एक एक्सक्रीशिया की, उसमें कहा कि पांच साथी काम करते हुए अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन उनको एक्सग्रेशिया इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एक्सग्रेशिया की कंडीशन है पांच साल, तो मैं कोशिश करूंगा कि पांच को घटाकर दो साल जाऊँ।
0: श्री विज ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ को पूरा करने के लिए वे काम शुरू कर चुके हैं और कुछ को पूरा करने के लिए वे और जोर लगाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। कांग्रेस ने जींद में भी आज इन्हीं मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है लेकिन अभी लू का चलना जारी रहेगा।
2: जो लू की स्थिति बनी हुई है ये कंटिन्यू करेगी, खासकर जो है वेस्टर्न पार्ट पंजाब, हरियाणा और पंजाब के बाकी क्षेत्रों में कंटिन्यू करेगी और टेम्परेचर जो है वो 46.9 रोहतक में हरियाणा में हाईएस्ट है और फ्रीकोट में 47 डिग्री सेल्सियस। ये जो है साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पंजाब के, यहाँ पे लू की स्थिति है और ऑरेंज अलर्ट अगले 48 घंटे के लिए, इसके बाद कुछ इसमें कमी आ सकती है कुछ, क्योंकि कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का कुछ विंडी वेदर का चांसेस लग रहा है कल के बाद, उससे स्थिति में सुधार आएगा। हो सकता है कि बीच बीच में आज और कल भी कुछ जो है हल्का सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक दो जगह पे पंजाब में हो।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईशवंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, एपिसोड नंबर 1288।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
3: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
3: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
3: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
3: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
3: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
3: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी
3: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे

0: से लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
6: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
6: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
7: Ma'am, parrot.
3: Oh yes, parrot is a mimic bird. But children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
10: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls. Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
6: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know.
4: How to be beautiful.
3: He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather.
4: He stuck it.
3: He
10: He's stuck in his tail.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ ये देखो।

0: दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी, ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ, अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा,
2: शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
3: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
3: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
3: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
3: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
3: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
3: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
3: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
3: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
3: जी
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?

0: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
1: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
0: हाँ दीदी,
1: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
0: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट्स है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।
1: संदेश से पहले श्रोताओं, आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1288। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हिसार केंद्र।

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसाना सीती।

0: राजेंद्र भाई राम राम।
1: अंजू बाण आपने भी राम राम और कार्यक्रम खेती किसाना से सुनने वाले सारे बाण भाइया ने भी
0: राम राम। राजेंद्र भाई, खेती किसानों से आपने बात कही है, तो किसान भाई के से ही खेत की पहचान है, खेती की पहचान है, कृषि की पहचान है, और दिन रात जो अपना खून पसीना एक करके अपने खेत में काम कर रहे हैं, और पूरी जो जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, और सबका पेट भरे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, और अनाज के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसी उत्पाद हैं जो कृषि पर निर्भर कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो सब्जियां हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कृषि के कुछ तो फाइनल प्रोडक्ट जिन नगमे हैं, और कुछ खेती पर आधारित यानी कि कृषि क्रियाओं से ही बनाए जाते हैं, चाहे वो जो कर खान पीन की आप बात करा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कर चीनी है, गुड़ है, गन्ना है, कपास है, दालें हैं, सब्जियां हैं, दूध है, ये सारे जो हैं खेती पर आधारित व्यवसाय के तौर पर जाने जाओ।
1: देखो अंजुबान, बात यह है मोटे तौर पर कि गणखराक सौदा जो है ना वो खेती से ही जुड़ा है। नुका करें कि जेड़े किसान समृद्ध होगा तो ओड विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे फिर वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी डाल के और विकास के काम हो। जब किसान समृद्ध है तो सारी चीज़ ठीक ठाक चलेंगी, व्यवसाय भी ठीक चलेंगे, दुकानदारी भी ठीक चलेगी, मतलब सारे जो काम है ना इससे गणखराक सौदा इससे जुड़े हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा,
0: लेकिन जो यथार्थ की आप बात करा, वास्तविकता देखा तो सारे व्यवसायी जो हैं वे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन किसान भाई की उतनी मेहनत के बावजूद भी वो तरक्की नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए, जिसका वो हकदार है, जो उसने परिश्रम का फल मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी रह जाए है उसमें।
1: देखो अंजुबान, इसमें एक बात तो ये है कि भाई जो कमी है ना, एक तो ये है कि भाई भाव ठीक ठाक की बात करें तो देखो वो किसान ने ठीक मिलना चाहिए बेचारे दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद एक जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि भाई किसान भाई ने भी थोड़ा सा व्यवसायीकरण खेती का जो है ना उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा।
0: राजेंद्र भाई, इसका एक कारण मैंने जो नजर आ वो ये भी है, क्योंकि सारे व्यवसाय जो व्यवसायी हुआ नहीं उसके कंट्रोल में हुआ है, लेकिन खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हुआ है, और उसका जो कंट्रोल है किसान भाई का उस पर कम हो जाए। मान लो राजेंद्र भाई भरी भराई फसल खड़ी है, सारा साल मेहनत करी किसान भाई ने, अच्छी कृषि क्रियाएं करी हैं, वैज्ञानिक सलाह के अनुसार सारे काम करे हैं, लेकिन भरी भराई फसल में एकदम तय मान लो बारिश आ गई, बेमौसमी टेम्परेचर तापमान कम ज़्यादा हो गया, या कोई ऐसा कीड़ा आ गया प्राकृतिक तौर पर जिस पर भाई किसान भाई का कोई नियंत्रण नहीं है, और वो आ गया तो ठीक है उसने नियंत्रण तो कर लेगा दवाई तक कोई प्रबंध करके, लेकिन जो नुकसान कर गया उसकी भरपाई कम है।
1: देखो अंजुबान, बिल्कुल ठीक बात है कि ना बहुत सारी चीज़ें जमींदार के लिए जुड़ी हुई हैं, मतलब एक तो मेहनत सबसे ज़्यादा, और फिर आपने कंट्रोल की बात बिल्कुल ठीक कई के पिछले साल देखा होगा कि जल भराव हो गया
0: जी,
1: फिर बनी बनाई फसल पर कई बार क्या हो, जिस तरह नर्मा की बात करें तो पिछले 5-4 साल से जो हम इस एरिया की बात करें, इस आर भिवानी एरिया जो सरसा का एरिया है, नर्मा जो है वो होना ही बंद हो गया, क्योंकि फसल ठीक लगी, जर्मिनेशन ठीक हो गया, फल ठीक लग गया, लेकिन आखिरी में जाके जब टिंडा बनाया तो मान लिया वो फसल वो खत्म हो गई, उसमें कीड़ा लग गया। तो बहुत सारी चीज इसी है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, जो कंट्रोल की बात करें, देखो अंजुकान इसमें एक बात और भी है, भाव की हम बात कर रहे थे कि भाई मान लिया एक भाई कोई अपना बिजनेस कर रहा है, मान लिया कोई कुर्सी मेज बना रहा है
0: जी,
1: तो वो उसका फिक्स कर ले अपना प्राइस, उसकी कीमत, क्योंकि फिर वो मुंह देख ले कि भाई यह चीज इतने की बनी है और ये इतने में बिकेगी तो मेरा फायदा होगा। लेकिन किसान के लिए समस्या ये है कि वो पैदा तो चेक इतने कर लो, लेकिन जब वह बिकने पाओ है तो ओड़े भी उसका कंट्रोल नहीं है,
0: तो वो खुद अपनी की फसल की जो है कीमत निर्धारित नहीं कर सकता।
1: बहुत
0: सारे ऐसे फैक्टर हैं, आपने कहा एक नहीं है, बाजार में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, और मिलके ही किसान भाई की कीमत फसल की कीमत का
1: दाम लगाऊ
0: जी दाम।
1: देखो अंजुबान, बात यह है ना, आप बात ये कर रहे थे, मान लिया आपने मैंने कुर्सी बनाई तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं इसने 50 रुपये में बेचूं, क्योंकि मैं 100 में बेचूं, जो भी भाई बिजनेस कर रहे हैं, मान लिया वो 100 में उसने लेनी है, कोई नहीं आया तो वो यूं कहेगा भी अब मैंने 80 में नहीं देनी, क्योंकि उसने अपना मार्जिन फिक्स कर रखा है, वो यूं कह दिया अभी मैं तो 2 महीने पाछे बेच दूं, 6 महीने पाछे बिक जाए, कोई खराब होने की चीज तो है नहीं। लेकिन जमींदार भाई की समस्या ये है पहुंच गया,
0: वो कंडीशन नहीं रख सकता कि मैं इतना भगोनी बेचूं, क्योंकि उसकी जो कुछ उत्पाद इसे हैं कि खराब हो जाएंगे समय के, कुछ समय के बाद उसकी कीमत खत्म हो जाएगी,

0: इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो किसान भाई की आर्थिक स्थिति पर गलत प्रभाव डाले हैं, लेकिन इसके लिए एक विकल्प और भी है राजेंद्र भाई। जैसे हमने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक साधनों पर, प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है कृषि व्यवसाय, तो उसके लिए आप दूसरा विकल्प जो खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए हैं सहायक धंधे, उनकी तरफ किसान भाई सोचा जा सके किसान भाइयों के द्वारा।
1: बिल्कुल, देखो अंजुमन के देखो, कोई भी अपना बिजनेस देख रहे हैं तो व्यापन खरीदन खातर अगले की दुकान पर जाना पड़े, अगले की फैक्ट्री में जाना पड़े। किसान के लिए समस्या ये है कि अपनी चीज बना के उसने खुले आसमान के नीचे जाना पड़े कि भी मेरी खरीद लो, फिर वो खरीदनिया पर डिपेंड करे कि उसका के भाव लाओ, उल्टा वो फिर घर ले आने
0: जी।
1: तो देखो यार, किसान के लिए ट्रेजडी है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी
0: फिर उल्टा घर ले आओ, फिर वो लागत ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी उसको लगेगी, फिर दोबारा मंडी में ले जाएगा फिर लगेगी, तो बेचारा कहीं ना कहीं किसान भाई इन चीज़ों में पीछे रह जाए है। तो उसके लिए एक व्यवसायिक सोच की आप बात कर रहे थे ना, कि जैसे कृषि पर आधारित कोई व्यवसाय किसान भाई ने, सब मान लो कि दूध का डेयरी का काम कर रखे है किसान भाई, उसमें तो वो मूल्य संवर्धन कर सके है, नए नए उत्पाद बना के फिर वो व्यवसायी कृषि में ज़्यादा व्यवसाय की सोच अपना सके वो।
1: हाँ देखो, इसमें तो वही तो हम कहने लग रहे हैं, इसमें एक चीज ये काम करेगी कि भाई आप इस जाल के उत्पाद कर बना लें कि आप उसमें अपना यूं मुनाफा काट सकें
0: जी।
1: और देखो किसान भाई जो है ना, कई बार हम कहते रहे कि भाई थोड़ा सा जो है ना, अगर आपने बिजनेस के तरीके से देखना है तो इस पर थोड़ा सा काम आपने जो है ना, इसके नफे नुकसान पे पेपर वर्क भी करना पड़ेगा। देखो अंजुबान, आपने कहा कि भाई लागत घटाने की बात है, तो इसमें जब तक आपने जोड़ तोड़े नहीं लगाया, कागजा में आपने काम ही नहीं कराया कि भाई आपने जो है ना भाई कितना तो इसमें लगाया था और कितना आपका उल्टा गया, तो फिर आप उसमें जो है ना लागत कम कुकर करोगे, पीछे का हिसाब किताब के ऊपर बैठेगा। और जब आपने वो लिख रखा है ना
0: रिकॉर्ड
1: आपने लिख रखा है, तो देखो फिर आपका मामला समझ में आ सके कि भाई देखो कई बार घरेलू चीज इसी है, उन चीजों को बिजनेस के तरीके से उनकी कैलकुलेशन कर दे को नहीं। मान लिया चाहे आपने डेयरी की बात करी, तो देखो भाई हर चीज की आपने यूं करनी पड़ेगी। इन्हों नहीं है कि भाई गेहूं तो आपके घर की होगी थी, चना आपने घर के थे, कोई बात नहीं थे, तो लेकिन उसका एक आप मूल्य तो लगाओगे ना कि मान ली डेयरी में आपने पशुओं खातिर जो दाना यूज कराया है उसमें वो कितने पीछे का आपने जो है वो यूज करा,
0: और जो डेयरी में रख रखाव है या आपने लेबर लगा रखा है या आप मेहनत कर रहे हो, उसकी भी तो कीमत उसमें लगाओगे नहीं, उसकी लागत भी तो लिखोगे उसमें।
1: बिल्कुल, देखो अंजुबान बात यह है कि एक एक चीज, वो लेबर वाली बात आपने बिल्कुल सही करी है कि बाबा भाई पांच आदमी मान ले घर के यहाँ और उसमें तो चार उसे काम में लग रहे हैं, तो उसका आपने देखना तो पड़ेगा ना कि भाई वो लेबर भी तो लगी।
0: तो जब भी आप लागत का आंकलन करें, निकालें सारा जो कुल लागत जो आप निकाला, तो ये सारे इनको जो अपनी जो मेहनत है उसका भी उसमें मोल भाव लगा हुआ है। अगर आपकी जगह कोई मजदूर लगाया होना तो वो कितने रुपये लेके जावर, तो इस तरह के कि जो सारा जोड़ तोड़ करके हिसाब लगाएं और फिर निकालें कि आपकी फसल की लागत कितनी हुई है और आपने मुनाफा कितना है। कृषि पर आधारित बहुत सारे व्यवसाय हैं डेयरी के अलावा भाई, जैसे मधुमक्खी पालन किसी ने कर रखा है तो उसकी पैकेजिंग अगर अच्छे से करके वही शायद आप बेचोगे तो वो उसकी कीमत डबल हो जाएगी। इसी प्रकार तो मशरूम की खेती किसी भाई ने कर रखी है तो उसकी भी पैकेजिंग ढंग से करोगे तो वो जो आप 10 रुपया की जितनी मशरूम दो उसी पैकिंग को आप 30, 40, 35 रुपये में आसानी से बेचा जा सकता है।
1: देखो अंजुबान, इसमें कोई बात ही नहीं, हम बार बार भाई कहते रहे कि आप ग्रेडिंग करके बेचें, उसने क्योंकि उसने मतलब छटाई करके बेचें
0: जी।
1: और जो भाई बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किसान का ही सौदा खरीदा, उसे तो अपना कोई चीज बनाई, मान लिया
0: किसान को ही हो सकता है उसका कंज्यूमर बन जाए किसान ने
1: बनाई है। देखो अंजुमान, इसमें कोई शक नहीं कि मान लिया आलू तो पैदा किसान ने करा ना, किसान का आलू तो केवल बिका 3 रुपये किलो, और जो भाई बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रोसेसिंग यूनिट जो लगा रहे हैं वो उसे कीमत चिप्स बना दिया या और कोई प्रोडक्ट बना दिए, वो उसमें थोड़ी सी उसको थोड़े में आवासी भरखीर वो उसने 30 रुपया का 40 रुपया नहीं बेचे हैं
0: पैकेट में,
1: पैकेट में आलू उसमें 2 लग रहे हैं, किसान में तो उसमें मिला है कुछ नहीं, 3 रुपया किलो भी क्या,
0: वो 30 रुपया में बेचे हैं।
1: हाँ तो
0: 3 का 30 यानी कि 10 गुना हो गया।
1: हाँ 10-20 गुना आराम थे। तो देखो ये तो कहेंगे भाई यानी कि भाई देखो आप अपने उत्पाद इस डालते पैदा करें और उसने मार्केटिंग भी उसकी ठीक ठाक करें, उसकी ग्रेडिंग करके आप उसने बेचें
0: जी। तो राजेंद्र भाई बातचीत जारी रहेगी, एक
1: मनोरंजन भैया का फिर करा दे हैं तो सुना यार अग्नि
0: जी।

0: राजेंद्र भाई, या तो सुनी भैया ने रागनी, और उससे पहले आप बातचीत कर रहे थे कि किसान भाई किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ा सके हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और जोड़ना चाहवांगे कि तकनीकों की बात जहाँ तक करा, तो चाहे वो खेती की बिजाई की तकनीकें हों, चाहे वो सिंचाई की तकनीक हो, आज हमारा जो देश है रिसर्च में बहुत आगे पहुंच चुका है, और बहुत सारे ऐसे अनुसंधान संस्थान हैं खेती के जो नए नए जो उपकरण है वो इजाद कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए, जो आसानी से किसान भाइयों की मेहनत और लागत ने कम कर सके हैं। और देखा होगा, देखो पिछले साल तो पानी जल भराव आपने कहा था कि समस्या थी, लेकिन ज़्यादातर जो है गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या, और खेतों में भी जैसे कि जहाँ धान के इलाके हैं
1: जी
0: में उड़े पानी का जो स्तर है वो नीचे काफ़ी चला जा रहा है, तो ऐसे में पानी बचाने की भी ज़रूरत है, कृषि क्रियाओं में भी पानी बचाने की ज़रूरत है। तो सिंचाई की जो आधुनिक तकनीकें हैं उनकी तरफ किसान भाई ने रुख करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, देखो अंजुबान, आपने बिल्कुल सही कहा कि मान लिया पिछली बार जल भराव की स्थिति थी और के बताए अगले साल और के बरा पानी की कमी हो जाए,
0: जी
1: तो ये तो देखो आपने पहले जिक्र कराया था कि जो प्राकृतिक आपदाएं जो है ना वो इस डाल की हैं कि वो किसान के हाथ में नहीं है, वो संसाधनों पर ही डिपेंड करे, भाई जो प्रकृति में जिस डाल चलाया उसे डाल था, उसे में मेहनत करके वो लिकट गया। अच्छा, सिंचाई की आप बात कर रहे थे, भाई आधुनिक तकनीक जो है ना वो हर मशीनरी में है या सिंचाई में है, या फिर उसकी तकनीक्स और बहुत डाल की हैं, या उसमें बदलाव करने की जरूरत है। आपने खेती में भी मान लिया दूसरी और चीजें जोड़नी हैं, सब्जी की ओर जाना है, फूलों की खेती की ओर जाना है, या फिर उसमें और भी बहुत सारी चीजें इसी हैं, मेडिसिन प्लांट्स भी हैं, तो आप जो सारी चीजें जोड़ तोड़ करके चलोगे ना हर चीज में, जब जाके आपने मुनाफा मिलेगा।
0: जी, तो सिंचाई की आधुनिक तकनीकों की बात करेंगे थोड़ी सी,
1: जी
0: क्योंकि पानी की जो समस्या है वो आने वाले समय में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो पानी को बचाना है, चाहे वो घरेलू उपभोग में हो चाहे वो खेती में हो, तो किस प्रकार से बचा सके हैं सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को अपना कर, और आधुनिक तकनीक जल की जो भारी बचत करे हैं और फसल की पैदावार ने बढ़ावा है, जैसे कि टपका सिंचाई है और फव्वारा विधि है,
1: जी
0: ये मुख्य रूप से मानी जावा है कि इनकी विधियों का इस्तेमाल करने से पानी की काफ़ी बचत हुआ है। और जिन जैसे पहले तो वो थे ना जहाँ पानी की कमी थी, वरानी क्षेत्र थे राजेंद्र भाई, आज उनमें टपका और ये ड्रिप इरिगेशन है या फवारा सिंचाई है, स्प्रिंकलर था जो कर रहे हैं सिंचाई,
1: जी
0: वो बहुत कामयाब है उन इलाकों में, क्योंकि इन विधियों से ये हुआ कि जितने पानी की मात्रा की ज़रूरत है केवल उतना ही पौधे में जावा है।
1: देखो जो इसकी ड्रिप सिंचाई की आप बात करें ना, तो एक तो इसमें यह हो ना पानी की 10 गुना तक की बचत है।
0: जी
1: देखो एक तो सीधा नालियां तक पानी देना, खाल बना के पानी देना, यू क्यों है भाई, इसमें फायदा
0: छोटे छोटे पाइप
1: भी ज्यादा
0: और
1: रहेगा
0: नोजल से।
1: आपका।
0: जी
1: हाँ, क्योंकि वो जो सीधा जो नोजल तक पानी है ना वो पौधे की जड़ते हैं वो छोड़ा जा उड़े और वो सीधा जड़ में पहुंचेगा, तो इसमें लगभग लगभग जो 70% तक तो पानी की भी बचत हो जाए और उसमें आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाए, क्योंकि जड़ान जो है ना वो सीधा पानी मिले
0: और इस तरह जो खरपतवार भी कम लागे हैं फसल में।
1: कम। बिल्कुल देखो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अंजुबान एक तो मान लो जो खाली जमीन पड़ी खुडा के बीच में, मान लिया आपने कोई भी फसल बो रखी जिस तरह सरसों है, चने है, जो भी है, बीच में जो खाली जमीन रहेगी उसमें जो सारी में पानी लगेगा तो जाहिर सी बात है वो जो खरपतवार भी उसमें उगेगा, और आपने पानी सीधा ही जड़ में दे दिया तो खरपतवार में पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो जामेगा
0: हाँ,
1: कुकर।
0: उगेगा कैसे।
1: जी
0: और दूसरी जो विधि है वो है स्प्रिंकलर यानी कि फवारा प्रणाली, और इसमें जो कर बूंद आया करे नहीं, बारिश आवे उसकी तरीके से पानी का छिड़काव करे है, और इसने पाइपों का जाल बिछा कर नोजल लगाए जावे है और घूम घूम कर पौधों में पानी डाला जावे। और इस विधि तक जड़ उबड़ खाबड़ जमीन है ना राजेंद्र भाई, ओड़या विधि बहुत कामयाब है,
1: जी
0: और रेतीली मिट्टी वाले जैसे मैं बरानी क्षेत्रों की बात कर रही थी उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त है ये जो भिवाणी दादरी साइड का इलाका है। पहले तो देखो उड़े मतलब कुछ कोई कोई फसल होया कर दी, लेकिन ई हर प्रकार की फसल किसान भाई ले रहे हैं, फवारा जो विधि है वो बहुत कामयाब है इन
1: कामयाब
0: क्षेत्रों
1: नो
0: में।
1: भी है जुबान इसमें जो है ना, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कोई भी फसल है, एक तो उसने आप नीचे को पानी देव नालियां थे, और एक जब वो टाइम पे बारिश जब उस फसल में मिल जाए तो देखो उसका न्यारा ही फर्क हो जाए। उसमें फर्क ये है अंजुबान के ऊपर के पानी ने जो है ना वो फसल मानने ज्यादा है, जिस
0: जी
1: तरह बारिश जब हो तो वो मान ले पत्ते में को पानी होते हुए फिर वो तने में को और फिर जड़ में जाए, एक तो वो धूल माटी जो है वो उतर जाए और सारे पौधे ने जो है ना एकदम से ठीक पानी मिल जाए, तो और पानी की बचत की भी बात आपने सही करी कि फुहारे तक करोगे तो भी देखो पानी बचा भी बहुत गा। ये तो अंजुबान देखो आपने देखे उड़ाए है।

0: जो एरिया की जिसकी आपने बात करी, भिवानी दादरी की बात करी, जो टिब्बे की जमीन थी, बालू माटी की जमीन, तो कोई फसल नहीं हुआ करती कि बस भाई बारिश होगी तो सरसों या चने की फसल हो जाया करती, जो बरानी मुख्य रूप से दो ही फसल है। आज आप उड़ो देखोगे तो चाहे कितना ही ऊंचा नीचा हो,
1: सब्जियों की भी खेती हो रही है।
0: सब्जियों की भी खेती मैं कह रहा हूँ अंजुमान, हमने देखा भी है कि इवन स्ट्रॉबेरी भी मानना इस मिट्टी ने, तो लोगों ने मतलब जो है बड़ी मेहनत करी, तो यह जो सिंचाई उड़ो बहुत ज्यादा कामयाब है।
1: और इस समय और मेहनत दोनों की बचत हुआ है। एक और है मल्चिंग, इसमें जो प्लास्टिक शीट या फसल के अवशेषों से मिट्टी ने ढक दिया जाओ है और इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहा है और बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती। बार बार नहीं जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली पानी जो है कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाओगा। और एक और है रेन गन और रेन इरीगेशन मेथड है और इसमें स्प्रिंकलर का ही एक
0: दो साइड में फेंकेगा, लेकिन जो रेनगन है वो तो इतनी अच्छी विधि है कि वो बहुत दूर तक एक तो वो सिंचाई कर रहे हैं और वो इस तरीके से घूम है कि जो ना फसल उसने और ज्यादा मानना है। एक जगह फुहारे की बजाय भी है ना, वो मुंह लगा लो एक तरीके से बारिश ही है
1: जी,
0: तो वो बहुत ज्यादा कामयाब है। उसमें भी जो है पानी की भी बचत बहुत ज्यादा है।
1: तो भाई ये तो सिंचाई की विधियों के बारे में आपा ने बातचीत करी और इब राजेंद्र भाई मनोरंजन की बारी फिर तो आ गई है। भाई सुनेंगे या रागनी
2: मुझको भी।

अरे तेरे जैसे बेईमान का हर मजान नहीं होता, वेद शास्त्र पढ़े बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता। धर्मराज के घर पे जाके अधर्मान नहीं होता, तो

अरे कोटी हो जा सांप से जा रजपुता की छोई का मंदक मुजम बना दिया तन नकल गिरे की मोरी का अपने घर में

दुनिया मजा बासु निर्भाग कर्म किया ओड़ी में मेरी मत हर रखी अकलमंद पतिव्रता का धर्म बिगाड़े चाप संग की रानी सू खुद मुख्तार रहा करती पर आज मोह

ਅਜੂ ਸੀਤਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹਿਬਾ ਮਿਲ ਜਾਈ ਦਵਾਈ ਰੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ।

राजेंद्र भाई, इसे रागनी के साथ है कार्यक्रम खेती किसाना सेती का समय समाप्त होने लग रहा है। थोड़ी देर में भैया तो फिर मुलाकात करेंगे कार्यक्रम मारे गांव में।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दादी कौन सा प्लांट है
2: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
3: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
1: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
3: क्यों
1: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
3: ओह थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना से थी, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन्स इंडिया।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं EIR FM हिसार और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है जो अंगदान, उत्तकदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं आरजे सागर। आज हमारे साथ हैं अंजलि मैम जो कि बैंगलोर की रहने वाली हैं एंड शी इज अ ऑर्गन डोनर। अंजलि मैम, मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? और
2: तो फिलहाल तो मैं मतलब बैंगलोर तो हूँ बहुत टाइम से, बट मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो मेरा जन्म आसाम में हुआ था और मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बड़ी हुई हूँ।
1: आपने किडनी जो है अपनी किसको डोनेट की थी?
2: मैंने अपनी किडनी अपने छोटे भाई को, जो कि मेरे से 4 साल छोटा है, उसको दी थी।
1: थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि क्योंकि वो आपके भाई हैं तो आपको पता होगा उनके लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था या किस वजह से उनकी किडनी जो है वो खराब हुई?
2: तो जैसे भाई की जब किडनी खराब हुई, जब हमें पता चला तब ऑलरेडी एक्चुअली एंड स्टेज था। हमें पहले पता नहीं चला था कि ऐसा कुछ है, मतलब हमें जिस दिन पता चला उसके अगले दिन ही डायलिसिस स्टार्ट हो गया था। भाई थोड़ा कंप्लेन करता था कि उसको हेडेक है, हमें पता नहीं था कि बिकॉज उस टाइम पे कोविड का टाइम था, बट फिर बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई तो फिर उसने हॉस्पिटल गया तो फिर वहाँ चेकअप करके पता चला कि हाई बीपी है। फिर बाद में अचानक उसके घर आ गया, वो चेकअप करा के कुछ टेस्ट कराने बाकी थे, पर रात में बहुत हालत खराब हुई, हम सीधा इमरजेंसी में लेके गए थे उसको। एंड तभी पता चला टेस्ट करके कि उसका जो क्रिएटिनिन है जो कि 1.3 या किसी से कम होना चाहिए, तो वो उसका 14 पहुंचा हुआ था।
1: ओके,
2: उस हिसाब से हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता था ही नहीं, मतलब हमें इमीडिएटली डायलिसिस कराना था, अगर नहीं होता तो शायद उसका आईसीयू में यू नो एडमिट कराना पड़ता, ऐसे हालत हो जाती। पर उसके लाइफस्टाइल की बात की जाए तो वो एक्चुअली आई थिंक काफी हेल्दी लाइफस्टाइल यू नो ही वाज लिविंग, ही वाज अ टी टॉटलर एंड कोई स्मोकिंग नहीं, कुछ नहीं। पर जो उसको किडनी की जो बीमारी हुई उसका नाम है आईजीए नेचुरोपैथी। 20 से 30 साल के जो लड़के होते हैं उनमें होती है, उस टाइम पे ही होती है। जैसे यंग बच्चे जीते हैं वैसा जी रहा था अपनी लाइफ स्टाइल, बट इस हालत तक कोई नहीं था कि जहाँ पे आपकी यू नो किडनी, आपके लाइफ स्टाइल, आपके मतलब ऑर्गन खराब हो जाए, ऐसी कोई बुरी लाइफ स्टाइल नहीं थी।
1: मैं बात करना चाहूंगा जब उनका ट्रांसप्लांट हुआ उनकी एज कितनी थी मैम?
2: उस टाइम पे उसकी एज थी 26।
1: अच्छा, 26 उनकी एज थी। Okay, was he active on workout?
2: Yes, वो भी बात थी, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि डेली जिम फ्रीक था, बट हाँ थोड़ा बहुत वर्कआउट उसका होता रहता था, मतलब जिस दिन ऑफिस जाता था वो डेली ही गो इन द मॉर्निंग टू द जिम, तो खूब एक्टिव लाइफस्टाइल था, मतलब ऐसा नहीं था कि ऑल द टाइम जिम के सामने बैठा हुआ है।
1: क्या यहाँ पर अगर हम एक वो निकाल सके कि एक गलती हमारे हैंड पर जो रही होगी वो ये रही होगी शायद कि रेगुलरली बॉडी को हमने चेकअप नहीं कराया, राइट?
2: एक्चुअली बात ये थी कि उसने 2 साल पहले कुछ चेकअप भी कराया था जहाँ पे उसका यूरिन प्रोटीन पॉजिटिव आया था, पर उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पे, बिकॉज डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं, बिकॉज नॉर्मली डॉक्टर ऐसा कुछ कंसर्निंग होता है तो डॉक्टर बोल देते हैं, तो अगर हमें सही टाइम पे पता चल पाता तो हम एक्चुअली उसकी डाइट के थ्रू ये जो ट्रांसप्लांटेशन था या डायलिसिस था ये हम और डिले करा सकते, बहुत डिले करा सकते थे। मतलब मैंने ऐसे लोगों भी बहुत जानती हूँ मैं जिनको पता चला कि उनको ये बीमारी है आईजी नेफ्रोपैथी, और उसके बाद उन्होंने 10-10, 20-20 साल तक अपना यू नो ट्रांसप्लांट डिले कराया है, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर चीजें जो आई थिंक डाइट होती है, डाइट बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह का खा सकते हो, आप किस तरह का नहीं खा सकते हो। आई थिंक अगर हमें सही टाइम पे पता चलता तो हम डाइट के थ्रू ये जो प्रोसेस है जो भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन का, वो हम बहुत सालों तक डिले करा सकते।
1: मैम, अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा उस एक स्टेज की जब आपके भाई, पहले मुझे प्लीज अपने भाई का नाम बता दीजिए, मुझे ऐसे अजीब लग रहा है आपके भाई का नाम लेना।
2: शुभम।
1: ओके, तो प्लीज मुझे अब उस स्टेज के बारे में बताइए जब शुभम की वो यू नो स्टेज आ गई कि डायलिसिस चल पड़ा, कितना लंबा उसका डायलिसिस चला, वो फेज कैसा था और आपके परिवार में क्या कुछ रिएक्शन था उस एक सिचुएशन को लेकर?
2: हमें ये पता चला प्रोबेबली इन द स्टार्टिंग ऑफ मे 2021 में, एंड देन उसके बाद तुरंत ही डायलिसिस स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे रात में वो 12-1 बजे एडमिट हुआ है, एंड द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, दो इट वाज संडे, डॉक्टर को आना नहीं था, बट डॉक्टर बिकॉज इट वाज एन इमरजेंसी डॉक्टर केम एंड ही कैथेटर लगा के सारा डायलिसिस स्टार्ट किया। तो इसका डायलिसिस चला है September 24th जब ट्रांसप्लांटेशन हुआ तब तक उसका डायलिसिस चला है, बट डायलिसिस से इट्स नॉट इजी, मतलब फॉर हिम इट वाज नॉट इजी, बहुत जैसे कि डायलिसिस जब होता था हफ्ते में 3 बार जाता था, वो 4-4 घंटे का डायलिसिस होता था, डायलिसिस के टाइम पे नौजिया हो जाता है, बहुत बीपी बहुत शूटअप हो जाता है, ये सब चीजें होती थी, और आसपास का जो माहौल रहता है वो भी मैं बोलूंगी कि इट्स क्वाइट नेगेटिव, बिकॉज ऐसा होता है कि आप सब साथ में हो, आपके ना आसपास वाले भी डायलिसिस करा रहे हैं, सब एकदम आपके आप जानते हो कि एक शेड्यूल फिक्स होता है आपका, फिर आप देखते कि अगले दिन अरे आपके बगल वाले जो थे वो नहीं आए, पता चला कि वो रात में है ना एक्सपायर हो गए बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। तो ये सब चीजें गई बस सिटी ऑफ टाइम। सेप्टेम्बर आते आते मतलब इतना बुरा हो गया कि वो डायलिसिस से भी सही से उसका मतलब 3 दिन भी हफ्ते में डायलिसिस को सफिशियंट नहीं हो रहा था। तो बाद में डायलिसिस डॉक्टर ने डेली

0: पहले से सब्सक्राइब किया है। फैमिली की ऑफकोर्स मेरा सबसे छोटा भाई है, एक बड़ी बहन है हमारी।
1: और उस टाइम पर जब किडनी देने की जो बारी आई तो जाहिर सी बात है काफी कुछ आया होगा दिमाग में, काफी कॉन्टेक्स्ट भी घुमाए होंगे, काफी कुछ यू नो जानने की भी कोशिश की होगी क्या सक्सेसफुल होता है नहीं होता है।
0: जैसे आपने पहले बताया कि आजकल गूगल पर मिल जाता है तो ऑफ कोर्स अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करी। फैमिली में सिर्फ मैं ही थी जो सिर्फ मैचिंग ब्लड ग्रुप पे थी, मैं ही एक ऑप्शन थी। हमने पहले वो भी ट्राई किया था कि मेरी मॉम किसी और फैमिली को देंगे जिनको बी पॉजिटिव की जरूरत है और वो सब फैमिली जिनके पास ए पॉजिटिव है वो लोग हमको एक्सचेंज स्वैप वाला, तो वो हमें मिला नहीं, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो फिर ऑप्शन ये था कि हाँ मैं मतलब मुझे ऐसा किसी चीज का डर नहीं रहा, मतलब आई वॉज एक्चुअली रेडी। मतलब जब भाई का डायलिसिस स्टार्ट हुआ जिस दिन सुबह, उस दिन ही नेट पे सर्च करती हूँ, उसी दिन शाम तक ही फाइनली ये एक सोल्यूशन है।
1: एक्चुअली मैम मुझे बताइए पोस्ट सर्जरी के बारे में थोड़ा सा कि आपकी कैसी कंडीशन रही, क्या आपके दिमाग में कोई डाउट ऐसा आया कि अगर मैंने अपनी किडनी डोनेट करी तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि नई नई शादी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं आपके कंधे पर भी, वो बताइए थोड़ा सा।
0: एक्चुअली सच बोलूं तो मेरे को ऐसा कोई सेकंड थॉट नहीं आया कि जहां पे मेरे को अपनी चिंता हो, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे डॉक्टर ने कहा था मेरे को वो सब चीजें फॉलो करनी है कि मेरे को अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे हर एक रेगुलर इंटरवल पे अपना चेक कराना है और अपने किडनी फंक्शन मॉनिटर करने हैं। शुरू के 3 महीने डॉक्टर ने कहा था कि आप ज्यादा हेल्थ वर्कआउट नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें थी। इसके अलावा जैसे 3 महीने हुए मैंने धीरे धीरे हल्का हल्का करके अपना यू नो वर्कआउट चालू किया, अपना डाइट का मैं ध्यान रखती हूँ। मेरा एकदम फिलहाल भी 4 साल हो गए इस चीज को, अभी एकदम ठीक हूँ, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ रेगुलर इंटरवल से अपने ब्लड टेस्ट कराती रहती हूँ एंड मैंने थोड़े टाइम पहले 20,000 feet माउंटेन एक्सपीडिशन भी किया था जो मेरे डॉक्टर को भी बहुत यू नो वाज रियली प्राउड ऑफ मी, सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई फील as fit as I was earlier. Yeah, only thing is I feel proud of myself that I was able to do something to my brother.
1: It's really crucial कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा गैप हमें मार्केट में नजर आता है, तो उसको यू नो उस वॉइड को भरने का काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो और कुछ अगर आप उसमें कहना चाहें लोगों को कि ऑर्गन डोनेशन के बाद कुछ ऐसा होता नहीं है, देयर इज नो सच कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नथिंग लाइक इट, आप डरते हैं बेवजह, मत डरिए, वो सब चीजें।
0: सब लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आप जब ये काम कर रहे हो ये आप एक्चुअली किसी को दूसरी जिंदगी दे रहे हो। मेरे हॉस्पिटल्स के पहले बहुत चक्कर लगते थे, मैंने बहुत डॉक्यूमेंटेशन के काम पे भी जरूरत किया, तो मुझे बहुत पता चला कि कहीं कहीं छोटे बच्चे भी हैं जिनको भी मतलब यू नो किडनी की जरूरत है। बट आई थिंक सिर्फ किडनी पे लेट्स नॉट स्टिक टू दैट। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि आई थिंक हर एक को एक प्लेज लेनी होती है कि दैट आफ्टर माई डेथ आई विल डोनेट ऑल माई,
1: यस यस प्लेज फॉर्म साइन करना होता है,
0: कर ही सकते हैं। आई थिंक इस अंधविश्वास में तो नहीं रहना चाहिए कि अगले जन्म में आप होंगे तो आपका ये ऑर्गन नहीं होगा आपकी बॉडी में, आई थिंक उन सब चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। आप अगर ये सोचो एटलीस्ट अगर आप अपनी डेथ के बाद आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं आप कितने लोगों को जीवन दे, रही बात जो ऑलरेडी लाइक जीवित है मतलब वो भी चाहे तो दे सकते हैं। मैं सिर्फ अपने को देखा है मैंने और मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ इस चीज को लेकर। हाँ एक्चुअली मेरे से ज्यादा उसको अपना ध्यान रखना पड़ता है, उसके हर महीने में या कभी कभी 2 महीने में एक बार उसके चेकअप होते रहते हैं, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज्यादा बाहर का ना खाए, वो एक्चुअली बहुत अवॉइड करता है। बट जैसे कभी कभी ऑफिस के काम से इधर उधर जा रहा है एंड ऑल दैट तब हो जाता है थोड़ा बाहर का खाना, बट उसको बहुत एकदम उसको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या खा रहा है और बहुत उसको मतलब ही हैज टू मेक श्योर कि व्हाट ही इज ईटिंग इज एक्चुअली फ्रेशली मेड, कि कोई यू नो बुरा खाना नहीं है। बिकॉज एक दो बार जब कभी ऐसा उसके साथ हो गया है कि उसने ऐसा कुछ खा लिया जिससे उसका फिर पेट खराब हो गया, देन वो पेट खराब का जो इशू होता है उसके लिए हम वो घर पे जैसे हम नॉर्मल इंसान हमारा कोई पेट खराब हुआ हम घर पे रहते ठीक करते, और उसके साथ ऐसा नहीं था, उसका पेट भी खराब हुआ था, वो हॉस्पिटल।
1: ऑलराइट मैम, अब थोड़ा सा मैं यू नो आपके परिवार से बाहर निकलकर बाकी लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। जब आप लोग हॉस्पिटल में थे काफी और लोग आपने देखे होंगे या उसके बाद आपको एटलीस्ट ये आंकड़े दिखाई देने लगे होंगे, ये वर्ड थोड़ा ज्यादा सीरियस सुनाई देने लगा होगा ऑर्गन डोनेशन, तो थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू अपने परिवार का ओवरव्यू बताइए कि कैसा सा होता है वो स्टेज। ऐसे भी काफी लोग हैं जिनको नहीं मिल पाते हैं ऑर्गन्स टाइम पे।
0: हाँ एक्चुअली वो बात तो है, बिकॉज जब जहाँ पे वो डायलिसिस कराता था ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका जो सालों से वेट कर रहे थे, बच्चे भी थे यंग। आई रिमेम्बर एक लड़की थी जो भाई डायलिसिस कराता था, आई थिंक वो रिसेंटली कॉलेज जाना शुरू की थी, आई थिंक वो भी बंगाल से कहीं से थी, बट बिकॉज उसकी तबीयत बहुत खराब हुई बिकॉज किडनी फेल हो गई, उसके पेरेंट्स को यहाँ पे आके शिफ्ट होना पड़ा सो दैट शी गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब मैं देखी थी कि वो बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और बहुत सारे लोग थे जो वेट करते हैं। ये भी देखती थी मैं जब जैसे कि हम डॉक्टर से ऐसे ही ना कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, तो पहला वाला कोई पेशेंट है उसको कहीं से किडनी चाहिए बट कोई मिल नहीं रही है, उसके फैमिली से कोई देने को रेडी नहीं है, बिकॉज लोग थोड़ा डरते हैं अपने बेटे की, उनकी हालत क्या होगी बाद में होने के बाद। बट हमारी फैमिली में हाँ ऑफकोर्स थोड़ा डर तो था, मतलब मेरे पेरेंट्स को था तो सही थे कि एक बेटे की किडनी खराब है, दूसरी बेटी की किडनी दे देगी, ऐसा कुछ था तो थी। बट देन समझाया, सबसे अच्छे से बात की डॉक्टर ने हमारे को, डॉक्टर ने भी अच्छे से समझाया, अच्छे से कंसल्टेशन हुआ, सब ठीक था फिर।
1: जी तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम आपका। यहाँ पर थोड़े से मैं अपने फैक्ट्स जोड़ना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे से बयां किया और थैंक यू सो मच। पहली चीज दोस्तों, ऑर्गन इंडिया इस एक फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन केवल इकलौता ऑर्गन इंडिया नहीं है। आप किसी भी ऐसे संस्था को जानते हैं, किसी भी ऐसे अपने आसपास आप ऐसे छोटे लेवल पर कोई एनजीओ काम कर रहा हो, कहीं भी जाइए, कुल मिलाकर पॉइंट ये है लोगों की जान बचाइए। ऑर्गन इंडिया एक पहल लेकर चल रहा है और हम आखिर तक ये इंश्योर करके मानेंगे कि हर एक इंडियन जागरूक हो चुका हो इस एक पर्टिकुलर कॉज को लेकर। अगर आप ऑर्गन इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं 1800-120-3648 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और आपकी जानकारी के लिए और चीज बता दूं, हर एक इंसान डोनेट नहीं कर सकता है, कई बार ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, कई बार ऑर्गन्स जो होते हैं मिसफिट होते हैं, कई बार ब्लड ग्रुप मिसफिट होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल ये हो जाता है, क्योंकि जो चांसेस हैं सक्सेस रेट के वो बहुत कम हो जाते हैं। हाई डिमांड लो डोनेशन रेट, ये है हमारा करंट जो स्टैट्स है इंडिया में अगर आप देखेंगे ऑर्गन डोनेशन। अब इसी के साथ दोस्तों इस शो को कंक्लूड करते हुए थैंक यू सो मच अंजलि मैम, आते दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
3: दोस्तों अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहाँ सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन्स इंडिया। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं मारे गांव के तहत रागनिया।

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: अंजुवान
1: जी
0: तो कार्यक्रम मारेगा मैं पहुंच गए हैं भैया, तो एक बार फिर से बतलाऊंगी। तो देखो भाई, गर्मी का टाइम आ गया है, अंजुवान छुट्टी छट्टी भी स्कूल की खुले जाएंगी मेरे ख्याल में, हो रही
1: और नहीं हुई है तो दो चार दिन में
0: हो जाएंगी, मतलब जो है ना बहुत से बार किसी में भी एग्जाम एग्जूम हो गए हैं और ये लगभग जो है वो खाली रहने से का टाइम आ गया
1: जी ना, खाली रहने तक काम के ऊपर चल लगा राजेंद्र भाई। आजकल के समय की जब बात करा तो इतनी चुनौतियां हैं, इतना कंपटीशन है, और आपने कहा कि पेपर दे लिए जो कुछ बच्चे

0: जो प्लस टू जिन्होंने करी है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या स्कूल में हैं, 10वीं में हैं, 9वीं में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हुए हैं, तो उनके लिए अब ये लर्निंग, मैं कहूँगी सीखने का समय है। एक महीना है, ठीक है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन भी होना चाहिए, रिलैक्स भी रहें, क्योंकि रोज़ तो स्कूल की बाजा दौड़ी है। अब एक महीने में कुछ एक आराम करके, तो इस एक डेढ़ महीने में आप इसने अच्छा उपयोग इसका कर सको, सदुपयोग कर सको हो इसका। कोई ना कोई, जैसे आजकल जो अपने देश की बात करा तो स्किल इंडिया
1: जी
0: का जिक्र करें हैं, प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी नहीं कहें कि अपनी जो स्किल्स बढ़ाओ, हर युवा के अंदर कोई ना कोई कौशल होगा तो फिर वो जो रोजगार की समस्या है वो आने वाले समय में नहीं रहेगी।
1: देखो अंजुमान, ये तो जो है ना, पुराने टाइम तो हमारे बुजुर्ग भी कहते आया करते कि जो हाथ का काम जिसना हो ना, हाथ का जो कारीगर है, बोले वो कितने मार नहीं खागा, वो कितने भी अपनी रोजी रोटी कमा लेगा। क्योंकि देखो पहले पढ़ाई इतनी नहीं थी, लेकिन वो जिस डाल के धंधे थे, भी कोई भाई किसी डाल का काम कर रहा है, किसी का कह में हुनर है, कोई अलवाई बन रहा है, कोई मतलब कहने का यू है भी आप कुछ ना कुछ सीखो ही गई इसमें। और आज का तो दौर ऐसा है अंजुमान, कंपटीशन इतना है कि जो आपने कही ना रोजगार वाली जो समस्या है, वो देखो बड़े आसानी से दूर करी जा सके अगर आप इसमें थोड़ा सा जो स्किल्स की बात करें, भाई जो भी आपने बखत मिला है आप किसी भी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो कोई भी चीज आप इस ढाल की जो है ना, वो उसमें कोई भी डिप्लोमा डिग्री है या और वो मतलब रोजगार के तो और नहीं तो बाहर बथेरे अवसर है। मतलब यू क्या करें कि जिसमें हाथ का हुनर है ना, वो कितने मार नहीं खाएगा भाई आपने किसी भी तकनीक पे कोई काम कर रखा है। तो
0: देखो आज की जगह किससे भी माँ बाप ने पूछ लियो, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे वो थोड़ा सा बड़ा है, टीनेज में है, चाहे वो मैच्योर है, हर आदमी का आत्मफोन है, चाहे बच्चा है बड़ा है। चलो बड़े आदमी तो अपना टाइम पास करने खातर या कुछ देखने खातर या कोई मनोरंजन खातर अपना फोन चला रहे हैं खाली समय में, और लेकिन जो बच्चे हैं वो गेम खेलने लाग रहे हैं कि मैंने कि मैं उस फोन में पता नहीं वो अच्छा देखा है माड़ा देखा है, ये तो माँ बाप ने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का गैजेट में इतना इंटरेस्ट है तो क्यों ना उसको ना कोई सॉफ्टवेयर या कोई कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है वो सिखा दिया जाए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे और वो फोन तय जो है दूरी भी बना लेगा कि मैंने कि मैं सीख के निकलेगा एक महीने में कुछ ना कुछ तो सीख, टाइपिंग ही सीख लेगा और नहीं तो
1: सीखेगा ना। कि भाई सदुपयोग करने की बात है कि भाई थोड़ा सा मान लिया आपने ठीक कहा था कि चलो आप लगातार एक साल से काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे, बीच में आपने थोड़ा सा रिलैक्स किया टाइम, तो नू कौन कहने के भी सारा दिन आप ईद भी लगे रहो है। अपना जो मानसिक विकास है बालक का वो भी जरूरी है, उसने थोड़ा खेलन का वक्त भी दें, थोड़ा सा किते अपना बाहर सरकार में भी बालक के लिए हंसन बोलन का वक्त भी उसने दे दें, लेकिन थोड़ा सा टाइम का सदुपयोग जो है ना उसने बालक ने समझा दें। कई बार जो टीनेज की बात करें ना अंजुमान, तो बालक ने इतना ज्ञान नहीं होता कि भाई ईवीओ जो समय है वो उसका जो बीतेगा, जो खाली रह गया तो वो उसने आगे जाके सीधेगा, बाद में उसको आवास जब होगा तो जब वो टाइम निकल जाएगा
0: जी।
1: तो इसलिए माँ बाप ने भी बहनों कहेंगे जो छोटे बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा इस चीज पे देखो फ्रेंडली समझाने की बात करें कि न्यू नहीं है कि भाई छुट्टी होगी रात ही फिर आपने कोई दूसरे ट्यूशन पे कोचिंग पे इस तरीके से उसको एंगेज कर दिया कि उसने भी टाइम ना मिले, इतना तो ना करें।
0: तो जो शौक होते हैं बच्चे की, वो भी जिसने कमे हैं उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान करवावें बच्चे का, किसी ने पेंटिंग का शौक है, किसी ने डांसिंग का शौक है, किसी ने सिंगिंग का शौक है, तो वो एक महीना बच्चे को पूरा समय दें, जो वो करना चाहता है वो उसने करने दें, क्योंकि वो एक तरीके से जो सारा साल पढ़ाई का बर्डन है वो भी कम होगा और उसने अच्छा लगेगा, अगर वो दोबारा से फिर उतनी एनर्जी के साथ स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाएगा यूनिवर्सिटी में तो उतनी दुगनी मेहनत है वो अपना 100% दे पाओगा।
1: देखो अंजुमान इसमें कोई शक नहीं कि वो एक तरीके की रिफ्रेशमेंट हो जाए
0: जी,
1: भाई मान लिया जिस तरह कोई भी धंधा हो बीच में यू नुका करना भाई एक छोटा सा ब्रेक कर लिया, वो ये ब्रेक ही तो है, ब्रेक का मतलब ये है कि वह आपने रिस्टोर कर लिया फिर तो एनर्जी जो है ना, और फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपका तन मन जो खुश होगा तो जिस काम में आप लाग रहे हो उसने पहले से भी ज्यादा जो है अच्छे तरीके से आप कर पाओगे।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छुट्टी होंगी इसका सदुपयोग करना, चाहे आप अपने शौक पूरे करो, चाहे आप उसमें कुछ अपनी नॉलेज बढ़ाओ, चाहे आप उसमें अपनी कौशलता बढ़ाओ, कुछ भी सीख सको हो आप, टेलरिंग सीख सको हो आप, ब्यूटी का कोर्स कर सके हैं, और खेल का अगर आपने इंटरेस्ट है तो खेल में थोड़ा एक महीना अपना पूरा टाइम उसने दे सके हैं, किसी गेम में आपका इंटरेस्ट है उसने अच्छा कर सके हैं, और किसी गैजेट में अगर इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर है, टाइपिंग है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है, किसी भी प्रकार का काम आप कर सके हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक महीना आप अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं और मनोरंजन भी करें और स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें।

0: देखो अंजुमन, बात यह है कि अभिभावक जो हमारे हैं उन अभी नु कहेंगे कि थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान कर लें कि बालक का जो है ना छोटी उम्र थी उसके इंटरेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान कर लें भी, किसी भी तरीके से आप उसके मतलब इस डर का कोई प्रेशर ना जान दें कि भाई आपने इस फील्ड में ही जाना है या यही काम करना है,
1: जी
0: तो इस चीज पे विशेष ध्यान कर लें।
1: जी तो राजेंद्र भाई, बातचीत जारी रहेंगे, गांव में छोटे जो युवा भाई बहन हैं उन तक फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि एक जो ऐसा समय है जहां बच्चे अपने करियर का चुनाव भी करेंगे।
0: और अंजुमान आप बात ये कर रहे थे कि जो हमारे बहन भाई हैं उन तक आप बतलाते रहेंगे,
1: युवा साथियों से
0: बिल्कुल
1: तो बातचीत कर रहे थे आप राजेंद्र भाई, कि ये जो समय है जून जुलाई का, अब जो कुछ बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं, प्लस टू के पेपर दे के बच्चे नई नई जगह पर एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, एडमिशन शुरू हो जाए ग्रेजुएशन के, तो और कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन कर लिए जिन पेपर दे रहे हैं वो आगे पीजी के लिए तैयारी करेंगे, रिसर्च के लिए तैयारी करेंगे कुछ बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी एरिया अपने इंटरेस्ट एरिया में जावें तो पूरी ये तैयारी के साथ जाओ और ये देखें कि आपका इंटरेस्ट, मान लो एक साइंस का बच्चा है राजेंद्र भाई, उसके पास उसने जूलॉजी भी पढ़ी है, उसने बॉटनी भी पढ़ी है, उसने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, लेकिन फिजिक्स भी पढ़ रहा है, लेकिन उसने अब पीजी तो एक में ही करेगा नहीं, तो
0: ठीक बात।
1: उस पीजी के लिए उस सब्जेक्ट का, उस विषय का चुनाव करें जहां आप अपना बेहतर परफॉर्म कर सकें।
0: बिल्कुल, इसमें देखो अंजुमन ये देखा गया कि किसी सब्जेक्ट में मान लिया आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो, आप उसकी ओर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान कर लें। और जो ये इस समय की जो बात कर रहे थे, मान लीजिए जब भी आपने जो स्पेयर थोड़ा सा मिले तो उसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दें ताकि आगे जाके आपने दिक्कत ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई कई बार हमने देखा है कि कई बार जो है वो मैथ की ओर उनका ज्यादा आकर्षण हो जाए
1: जी
0: कि उनको अच्छा लगता है ज्यादा पढ़ना, तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लें। या कई बार बच्चे का कई बार इंग्लिश में ज्यादा वो हो जाए, तो कहने का मतलब आगे आपने जो पीजी करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपने थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
1: और बात केवल इंटरेस्ट की भी नहीं है राजेंद्र भाई, उसके जो आगे स्कोप हैं, कितनी संभावनाएं हैं, रोजगार की संभावनाएं कितनी है किस सब्जेक्ट में, उस पर भी आप पूरी देखभाल करें। जैसे प्लस टू का रिजल्ट आया है, बच्चे आगे नए एडमिशन, कोई टेक्निकल कोर्स में लेने की सोच रहा है, कोई ग्रेजुएशन करने की सोच रहा है, तो आप ये देखो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, मेडिकल कर रहे हो, नॉन मेडिकल कर रहे हो, या ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, तो आप ये देखो ह्यूमैनिटीज में भी उन सब्जेक्ट, उन विषयों का चुनाव करें कि जहां आपके आने वाले समय में रोजगार की समस्या पैदा ना हो, संभावनाएं जड़ ज्यादा हो, रोजगार की संभावना ज्यादा हो, उस क्षेत्र का चुनाव करें।
0: बिल्कुल, देखो अंजुबानी ये तो देखना ही पड़ेगा कि भाई आप जो अभी शुरू करने जा रहे हो जो चीज उसका फ्यूचर क्या है, ये तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि बात स्कोप की अगर करें तो,
1: जी
0: क्योंकि सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई रोजगार की अभी थोड़ी कमी है, तो जहां स्कोप ज्यादा हो पहले तो आप उस चीज को चुने। इंटरेस्ट तो आपने सही कहा कि वो तो दूसरी चीज है, लेकिन फिर भी अगर स्कोप की बात करें तो, लेकिन ईसा तो ना देख बैठे, कई सारी डिग्री इसी अंजुमन भी मान लिया उनमें आगे जाके स्कोप तो अच्छे हैं, लेकिन मान लिया बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है,
1: जी
0: फिर वो ठीक से स्कोर नहीं कर
1: परफॉर्म नहीं कर
0: पाएगा,
1: पाएगा।
0: परफॉर्म
1: जी
0: नहीं कर
1: जी
0: पाएगा, उस पर उसकी सब्जेक्ट पर जब पकड़ नहीं होगी तो फिर आगे उसने कंपटीशन में दिक्कत
1: एक
0: आओगी,
1: चीज और भी है राजेंद्र भाई, सारे रोजगार की संभावनाएं सभी को नहीं मिलती,
0: नहीं मिलती।
1: और कई बार ये हुआ है कि रोजगार मिलने के बावजूद भी आपने कहा कि इंटरेस्ट नहीं है तो परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पाते, तो आपने बिजनेस करना है, आपने अपना एंटरप्रेन्योरशिप, आपने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या आपने नौकरी करनी है, या आपने सिविल्स के लिए जाना है, जो भी है पहले सोच विचार करके आप उसका सिलेक्शन करें ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होती। कई बार नहीं वो है कि ओहो यू कर लेंदा तो गणा वो हो जाए, इबना तो पता नहीं कि कहाँ होता मैं, तो इस तरह का अफसोस आपके पास नहीं होना चाहिए। और ये जो इस तरह के जो डिस्कशन है वो इकट्ठे ग्रुप में मिलके जो युवा साथी है, पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं, वो कर सके हैं, गांव में क्लब बने हुए हैं,
0: जी
1: तो ये जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो यूथ क्लब बने हुए हैं गांव-गांव में, हर गांव में लगभग बना हुआ है, तो वहां भी करियर काउंसलिंग संबंधित आपस में मिलके कोई सेमिनार या इस तरह का आयोजन कर सके हैं युवा साथी, ताकि जो आपको पीछे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इस तरह के जो ये जो सेमिनार होंगे, हाँ, गतिविधियों
0: गतिविधियों
1: से लाभ उठा सके हैं।
0: बिल्कुल। देखो जुबान आजकल तो आपने देखा कि जमाना जो है वो तकनीक का है, तो फोन पे भी बड़े ग्रुप्स बने होते हैं, बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं,
1: जी
0: तो
1: कौन
0: उनमें
1: क्या
0: भी
1: कर रहा है पता
0: हाँ
1: लगता
0: कौन क्या
1: रहा
0: कर
1: है।
0: रहे हैं अभी, तो हमने कई बार देखा भी है इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं ना बच्चों के लिए बड़े हेल्पफुल हुए हैं। वो मतलब एक कोई वैकेंसी आई तो फिर वो शेयर कर लेते हैं भाई इस नौकरी में इतना है, या फिर आपने इस में जाना है तो आपके लिए ये कोर्स जो है ये अपने लिए ठीक रहेगा,
1: वहां से कोचिंग के लिए भी बता सकते हैं।
0: मतलब आपस में देखो बड़ा ये है, एक हेल्दी डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सारे बालक जो है ना वो इस चीज ने नहीं पकड़ पाते कि करियर बनाने की खातर है ना अंजुबानी बहुत जरूरी चीज है। कई बल्कि आजकल तो ना कई एजेंसीज भी जो है वो बालक ने मार दौर लिया,
1: एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी है, काउंसलिंग एजेंसीज भी है।
0: हाँ, वो भी काउंसलिंग के थ्रू फिर बालक का इंटरेस्ट भी देखना है, फिर स्कोप की भी वो बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप जो इसने थोड़ा सा धरातल का ही भी ले आया ना गांव की मोहल्ले की बात करें तो भी इस पे काम कराया जा सके।
1: गांव तक राजेंद्र भाई नहीं पहुंचेगी, जो कर गांव के जो युवा क्लब की मैंने बात करी थी, आपको बताया था अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो हर गांव में तो कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा है जो अच्छे पद पर पहुंचा हुआ है, अच्छा, या कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, या कोई अच्छी कोचिंग चला रहा है, या कोई अच्छा काउंसलर बना हुआ है। तो यूथ क्लब जो है गांव के, वो अपने गांव के उन व्यक्तियों को भी उसमें शामिल करें ताकि वो गांव के जो नए बच्चे हैं उनकी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, देखो हमने बहुत जगह ऐसा देखा कि उनका अगर ना अंजुबान के बोले उसने तो गाइडलाइन कौन मिली है, भाई माँ बाप नहीं पकड़ पाए या उसकी जो है कंपनी सी नहीं थी। तो गांव की खासकर बात करें तो भाई युवा बान भाई जो है हमने कहेंगे तो पहले तो अपना थोड़ा सा एक कंपनी आपकी किसी है उस पर थोड़ा सा गौर कर लें। देखो अंजुबान इस बात का बड़ा फर्क पड़ा है कि आप जिस माहौल में रहोगे आपके चारों तरफ जो एनवायरमेंट रहेगा उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मान लिया कई 8-10 बालकों का भी मान लिया ऐसा ग्रुप हो जाए जो जिनका फोकस जो है वो करियर बनाने पे है कि भाई बाकी चीजें हैं वो शौक तो बाद में पूरे कर लेंगे, लेकिन कई बार देखो गांव में देखा गया है कि बालक अगर थोड़ा सा भी भटक गया तो वो करियर की बात फिर कम करेंगे, फिर वो जो है
1: इधर उधर की बातें करने लगे,
0: इधर उधर की बात करेंगे या फिर छोटी उम्र में अपने शौक पूरा करने की बात करेंगे। तो इस टाइप की जो है ना वो तो देखो भाई माँ बाप की जिम्मेवारी रहेगी कि बालक की कंपनी का थोड़ा सा ध्यान रख लें, और जो हमारे युवा बान भाई उन्हें तेनों कहेंगे भाई देखो करियर की बात करो और आगे आपने कड़बड़ना है कितना स्कोप है ताकि आपकी जो लाइन बन जाएगी ना
1: जी।
0: तो फिर आपने बिल्कुल सही कहा था कि आने वाले बालक भी जो है उसी माहौल की तरफ फिर चल पाओगे
1: जी। तो राजेंद्र भाई मनोरंजन की बारी फिर तो आ गई है, रागनी और सुनवाओगे सारे बान भाइया ने, तो सुनेंगे यह रागनी
2: करते रहे बा

0: लक्ष्मी चंदे बड़े कष्टी से हम किसे बुरे पंजे में
1: हम किसे बुरे पंजे में
0: रहे जिंदगी।

0: तो रागनी तो सुना दी बन भाई और अंजू बन देखो ये घड़ी भी इशारा कर रही है
1: जी
0: कि चलन का टाइम हो गया। तो अपने भाई राजेंद्र दोन
1: और अंजू दोन को दे इजाजत सारे बन भाइयों ने राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे गांव FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। श्रोताओं, पेश खिदमत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इन बेशकीमती फिल्मी नगमों को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा सलाम। श्रोताओं, पहला गीत भी आइए सुनते हैं फिल्म सलामी से। इस जलती धूप में ये घने सायादार पेड़, मैं अपनी जिंदगी इन्हें दे दूं जो बन पड़े।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सारिका शर्मा के साथ आकाशवाणी हिसार 102.3 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। तुम नाराज हो तो मुझे मनाने का हक दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, मेरा वजूद कुछ नहीं है। अपनी खामोशी से पर मुझे सजा मत दो, दिल से चाहता हूँ तुम्हें आज भी उतना ही, कम से कम मेरी मोहब्बत को झूठा ना कहो।

सपने साजन के। कभी ऐसा लगा है कि कोई बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है, शायद इसीलिए कुछ रिश्ते बातों से नहीं बल्कि खामोशियों से बहुत गहरे हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारिका शर्मा के साथ FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से। आइए जानते हैं कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 34 है, जिनकी कुल लंबाई 2484 किलोमीटर है। इसके अलावा 11 एक्सप्रेस वे और कुल 1801 किलोमीटर राज्य राजमार्ग हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, रख रखाव और उन्नयन करता है। आइए जानते हैं कि हरियाणा के 10 सबसे बड़े शहर कौन से हैं। तो वो हैं फरीदाबाद, उसके बाद हैं गुरुग्राम, पानीपत, अंबाला, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, करनाल, सोनीपत और पंचकुला। और आइए जानते हैं कि हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो पंजाब, यह हरियाणा राज्य के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, और हरियाणा के सुदूर उत्तर में स्थित है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान स्थित है, और हरियाणा के पूर्व में स्थित है उत्तर प्रदेश। हरियाणा के सुदूर पूर्व में बहुत ही छोटी सीमा उत्तराखंड की भी है। इन राज्यों के अलावा हरियाणा दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को तीन तरफ से यानी कि उत्तर, पश्चिमी और दक्षिण में घेरे हुए है।

सोतरी दोनों डबपड़ काला खड़िए केवाड़ी जड़िए शीशम के कुंदी लगरी ना ताड़ा फर्श गिलारी संगमरमर के दिखे ब्योत निराला सोने का पानी ओया छा

工怎么吵架，咱们今天晚上一边吃夜，咱们爷们咱也给咱俩过来把说家。

मैं तेरे मुर्गाई एक आधी जगे कंठारे पे हरे हरे रंग की काई गुरु मान संगी बता गए जो धर्म कर्म

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने

0: के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है।

0: पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहार, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens.

0: अभी आपने एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक इंडस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को

1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीरदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

ओंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी हिसार है, FM बैंड 102.3 MHz पर।

आपका प्यार, आपका इंतजार, ये है आपका ख्वाब आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, पेश खिदमत है कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सबके संदेश व्हाट्सएप स्क्रीन पर मिल चुके हैं। हाँ, इतनी इल्तिजा तो आपसे कर ही सकते हैं हम, क्योंकि आप तो हमारे अपने हैं, कि अपने संदेश आप 9:30 तक भेज दिया कीजिए। अब भाई ये क्या बात हुई कि आप तो 10 बजे ही अपने संदेश भेजते हैं, इतनी देर से आपके नाम मिलेंगे और हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं इतनी गर्मी में। आप कहिए, ये भी कोई बात है? इतने सारे गाने आप जो हमें भेजते हैं, हम उन्हें कैसे चुनेंगे? चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है आप आगे से ध्यान रखेंगे। अब हमें भी तो आप ही का सहारा है। वो कहते हैं ना कि जब तलक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे, ना भी चमके तो कोई बात नहीं, तू तो वैसे भी सितारा है मुझे, प्यारा है मुझे। श्रोताओं, आप सब के संदेश हमें मिल चुके हैं। लेते हैं ये पहला व्हाट्सएप संदेश। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, बटिंडा रोड डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, महाराष्ट्र हिंगोली से हमारे श्रोता हैं शाहजी बोडके, नंदा बोडके और हनुमान बोडके, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णम आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और ये हमारे अगले श्रोता हैं, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, अलीका डब्बाली से हैं बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। और श्रोताओं, ये व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा है ये हमारे श्रोता हैं गांव कल्याण मलका, जिला भटिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर, गांव चूली देशवाली तहसील आदमपुर से हैं मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ौली से रघुबीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्रमोहन शर्मा और रामनिवास पांडू, चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, लदावली जिला मुरादाबाद कसाना से हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। और ये हमारे अगले श्रोता हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार खटक, दीपक और कुमारी पूजा खटक। और हमें भेजा है अगला संदेश हमारे इन श्रोताओं ने, ये हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन, पद्मा टॉकिस नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह। और ये फरमाइश संदेश के साथ है गांधी चौक कोपर पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर विर्क, जैतेक विर्क और मीका विर्क, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। श्रोताओं, आपके लिए पेशी खिदमत है ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, सच्चा प्यार करने वालों के बस दिल ही बड़े नहीं होते, बल्कि उनके वादे भी बड़े होते हैं और उनके इरादे भी बड़े होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्यार की डगर इतनी आसान नहीं है, उस पर चलना इतना आसान नहीं है। उसमें धूप, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, बरसात सब कुछ आएगा, लेकिन उसे पार करके उन्हें निकलना ही पड़ेगा। हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, वो ये कहते हैं। आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। अब देखिए ना, हम भी तो इंतजार ही करते रहते हैं 10 बजे तक आपके संदेशों का, और वो आप हमें भेज देते हैं। ये हमारे श्रोता हैं नागचूल रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। गांव चौधरीवास से हैं राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विवेक प्रयाग और प्रियांशी। और हमारे अगले श्रोता हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित वायाल, कुमार वत्मेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख। मजनू काटीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र ओबेरॉय। और ये हमारे श्रोता हैं आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मौर्य जंघेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल। गांव लवी तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, नवीन, मंदी, प्रियंका, सपना, नीतू और वेदांश जांगड़ा। और ये भेजा है हमें अगला फरमाइश हमारे भेजने वाले श्रोता हैं गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रियांश और पूरा लोखंडे परिवार। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। गांव चोहलदा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। और ये हमारे श्रोता हैं फवारा चौक सिरसिला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची, सोमल, कार्तिक और इनका पूरा परिवार। हमारे अगले श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा गव्या, भाई सुचा सिंह पाठक और विनोद पुरी। और ये हमारे श्रोता हैं हिसार से वीरेंद्र। और हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान और जीशान खान। और अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसिफ हाशमी, तैमूर और कलीम अंसारी। करणवीर हाउस भुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम दमन और अभिजोत। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बाजार और बिट्टा बजाज। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत हम सब भी आपके साथ।

दोस्तों, ये सच है कि प्यार करने वालों की डगर कभी सीधी कहाँ होती है। कांटे जैसे रास्ते पर चलते हुए पैर में छाले भी पड़ते हैं। वक्त भी इम्तिहान लेता है, कोई इंतजार करता है तो कोई करवाता है। मेरे दिल की उम्मीदों का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसे मेरा एहसास तक नहीं। और देखिए, हम तो आपके संदेशों का कितना

इंतज़ार करते हैं और आप भी अब इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि आपके नाम कब पुकारे जाएं। यह है हमारी श्रोता गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। गांव हिपरसोगा, तहसील औसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। मलियाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीव्यम जैन। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्टो। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी, शालिनी खेड़ा, टिवानशी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और इनका पूरा परिवार। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, निहारिका, योगेंद्र, नरेंद्र चंडालिया और इनका पूरा परिवार। और ये हमारे अगले श्रोता हैं संगमित्रा श्रोता संघ पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंघणकर, दिशांत और अर्पिता जी। और ये हमारे श्रोता हैं मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, रितेश, किरण, पवन शर्मा, नेकीराम शर्मा, आशा शर्मा, रणजीत शर्मा, गीता शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये संदेश आया है शेरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। हमारे अगले श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, मोहम्मद रिहान, सामरीन परवीन और माहिरा नूर। श्रोताओं, आपसे फिर से निवेदन है कि जिनका नाम एक बार पढ़ दिया गया है वो कृपया फिर से अपने संदेश ना भेजें। और अब आपको सुनवाते हैं ये बेहद प्यारा सा गीत।

दोस्तों, सच्चे प्रेम की पहचान तो यही निशानी है कि सच्चे प्रेमी धैर्यशील होते हैं। सब्र का पैमाना उनका कभी छलकता नहीं है। कड़कती ठंड हो या ये बहता पसीना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने महबूब की हर चीज से प्यार होता है, तो फिर उस मोहब्बत में मिलने वाले दर्द और तकलीफ की वो परवाह कहाँ करते हैं। यही तो निशानियां हैं सच्चे महबूब की मोहब्बत की। खुद हैरान हूं मैं अपने सब्र का पैमाना देखकर, तूने याद भी ना किया और मैंने तेरा इंतजार करना नहीं छोड़ा। और अब आप भी अपने इंतजार को खत्म मत करिए और सब्र का पैमाना छलकने बिल्कुल मत दीजिए। आप जरा सा अपना रेडियो सेट को छोड़कर जाएंगे और यहाँ हम आपका नाम पढ़ देंगे। आपकी शिकायत होगी कि नाम नहीं पढ़ा गया, लेकिन बात दूसरी है, नाम पढ़ दिया जाता है तो हमें पता है आप बहुत सब्र वाले हैं। हम लेते हैं अगले श्रोताओं के नाम। रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर।

अगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और ये हमारे श्रोता हैं दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कान्हा लड्डू, ममता और इनका परिवार। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकर। और ये हमारे श्रोता हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और हैं रेहान शेख। गांव बांडा हाड़ी जिला हिसार से कृष्ण मोटा, सतबीर हठी, मुकारब खान, जगदीश चंद्र जांगड़ा। और हमारे अगले श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव और सायना और निवान शर्मा। पटियाली रोड गंज डंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सदस्य। जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर यूपी से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह। समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, आरजू पप्पू, हंसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा खुश दिल परिवार। हनुमानगढ़ फाजिलका से हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय और पीबी कुल थे। श्रोताओं अब आपको इंतजार और नहीं करवाएंगे, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आप सबके संदेश इतने प्यारे होते हैं, इतने सुंदर संदेश और इतनी अच्छी आपकी भावनाएं जो आप हमें लिखकर भेजते हैं कि ऐसा लगता है आपने मुझ जर्रे को आफताब बना दिया। आपकी इन प्यारी भावनाओं के लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल प्यार करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों। सब्र तो उनमें होता ही है क्योंकि वो उन्हें रखना पड़ता है, और इसके साथ साथ वो इस बात की कभी परवाह नहीं करते कि मौसम कैसा है, जिंदगी कैसी है, हालात कैसे हैं, गर्मी है, प्यास लगी है, लेकिन नहीं, इसका तो उन्हें पता ही नहीं होता। वो होते ही इतने प्यारे लोग हैं, वो सिर्फ प्यार की कद्र करना जानते हैं। दिल की हसरत जबां पे आने लगी तो उन्हें देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। ये इश्क की इंतहा थी या दीवानगी मेरी, हर सूरत में मुझे बस तेरी ही सूरत नजर आने लगी। दोस्तों, ये हमारे अगले श्रोता हैं जो इंतजार कर रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गांव वडागर निन्नाबाई, जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। और ये हमारे श्रोता हैं रविंद्र पनिहार, नायरा, यश पनिहार और पूजा पनिहार, सिरसा गांव कुकटथाना हरियाणा से। और ये भेजा है संदेश हमें संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि गायकवाड़, दिशा बागमारे और शशांक बागमारे। पांडरकवाड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, धनुश्री और अनुश्री बुरांडे। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से हैं मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और इनके साथ हैं यश मंसूरी। गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, फैजान उस्मान, कलीम अंसारी। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव, मेगा साक्षी, आशीष अनुज, विशु छोटू, एसके पप्पी खुराना। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से हैं मधु नायक। आप सबको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने अपनी मेज़बान सारिका शर्मा के साथ। दोस्तों, एक और बात बताएं कि सच्चे प्यार करने वाले लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता है, ये तो किस्मत वालों की किस्मत में ही होता है, और वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं। बेमिसाल होती है उनकी मोहब्बत और उनके जज्बात। तेरी मुस्कान में छुपी है मेरी जिंदगी की रोशनी, तू हंस दे तो सारा जहां महक महक उठे। और अब आपके नामों की बारी है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से हैं विनोद पुरी, वीपी, रंजू, अशोक पुरी, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रमा पुरी, सुनील पुरी, वीके पुरी और इनका परिवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभाकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेकर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता

मिगलानी, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस डागला परिवार। वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और ये हमारे श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। बावड़ी गेट भिवानी से रोशन लाल पच्चेरवाल, युवान, योगेश, दीक्षा, उपासना, कुलदीप, धर्मवीर खटक, प्रेम, उमेश और उपेंद्र। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज और हिमांशु सुथार। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी मनीष पंवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जायपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। झारखंड सुपारीशाही गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली कुमारी और देवेन जी। और ये हमारे श्रोता हैं सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ये भेजा है हमें संदेश और भेजने वाले श्रोता हैं कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा, हिना, गुलिस्ता, रानी, नंदिनी और अंजलि। आपके लिए है ये प्यारा सा नगमा, हम भी आपके साथ सुनेंगे।

दोस्तों आपको पता है सच्चा प्यार करने वाले लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल आप सबके जैसे होते हैं, बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। वो तो हर हाल में खुश रहना चाहते हैं, वो तो बस ये चाहते हैं कि खुदा उन्हें तोहफे में उनकी मोहब्बत दे दे, और हम भी उन मोहब्बत करने वालों की खुशियाँ ही चाहते हैं उस ऊपर वाले से। वो कहते हैं ना कि मैं जब सो जाऊँ इन आँखों पर अपने हाथ रख देना, मैं जब सो जाऊँ इन आँखों पर अपने हाथों को रख देना, यकीन आ जाएगा कि पलकों तले भी दिल धड़कता है। हमारे अगले श्रोता हैं सब्जी मंडी बुल्डाना से शबीर हुसैन, शहजाद, मुजु बाबा, आयजानम और मुदस्सिर हुसैन। और ये हमारे श्रोता हैं, इनका नाम है शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा से आफ्ताब रियाज, मोहम्मद अनवर, लुबना और आलिया। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज भयान और इनका परिवार। महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। गांव चौटाला से हैं दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग। और ये अगला संदेश हमें भेजा है पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम पलक, नितिन करण, निहारिका और हैं वंश बत्ता, पीपर पारा पालचुना, मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत और गुरुशब्द राहुल। और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है अपना संदेश, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शायना विशाल, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। आप सबके लिए हम लेकर आए हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, आप सब इतने प्यारे श्रोता हैं कि आपके बारे में यही कहने को दिल करता है कि आपकी मुस्कान में वो बात है जो हर दर्द को भुला देती है। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपनी मेज़बान सारिका शर्मा को। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली प्रतीक्षा के बस चंद पल और हमारे साथ।

0: भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे।

0: करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट